0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய தேனிசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது சமஸ்கிருத செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாசகஹ புனித த்ரிபாடி. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 कोटि रुप्यतोप्यधिकानां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्. एतासु परियोजनासु मार्ग रेल परिवहनं पत्तन मूलभूत संरचना पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति. यस्मिन् 7,30,000 कोटि रुप्यकाणां राष्ट्रीय राजमार्ग कार्याणि चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः अमृत भारत स्थानक योजनायाः अंतर्गतं रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमस्ति. सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः संपर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति. उद्योग व्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते. राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते. जनसेवायां स्वकीय यात्रा संस्मरता श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकार प्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्. प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केन्द्रम् अपि राष्ट्राय समर्पितम्. इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीय चरणस्य पूनमल्ली वडपलनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः. यस्य निर्माणं प्रायः 9,000,000,000 कोटि रुप्यकैः अस्ति. प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्वेषयति. सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति. ह्यः सायंकाले चेन्नईनगरे जयगोपाल गारोदिया हिन्दू विद्यालये आयोजिते स्वर्णजयन्तिमहोत्सवे भाषमाणः प्रधानमन्त्री एतदुक्तवान्. सः विशेषतया अवदत् यत् विकसितभारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति.
2: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है. 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं. हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है.
1: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैधनिगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः. न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा मेट्रोसेवायाः समयानुसारं सञ्चालनम् अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्. न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या. सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
3: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु. अथ सद्यो वृत्तान्ताय

0: चर्चा न्यूज ऑन eir.gov.in इति जालपुटम अवलोकन्ताम्।
1: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इंदौरनगरस्य होलकर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: நேரம் காலை 7 மணி, ஆகாஷ்வாணி சென்னை.

0: श्रोताओं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। ब्रह्मचारिणी माँ तपस्या और साधना करने वाली देवी है। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
1: नमस्कार मनोज। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। लेट मी आल्सो विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। टुडे इज द सेकंड डे जस्ट लाइक मनोज मेंशनड एंड दिस एंटायर वीक इज स्पेशल बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग नवरात्रि एंड दीस डेज आर स्पेशल बिकॉज सम पीपल fast on these days and the entire diet, it cleanses your body, the weather changes and it fits perfectly with the weather as well. Okay, so here we are with a lot of updates for all of you, be it some international or national news, Metro City updates or some historical information related to this particular day, which is 12th of October 2026. And today is Monday, so a very happy Monday to all of you. Let's begin our program with the news headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों को नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दौर युवाओं का है, उनके नए विचार और कड़ी मेहनत भारत के साथ साथ दुनिया का भविष्य भी तय करेंगे। श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी जोर दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।
1: A major step towards women's empowerment and green mobility in the national capital. The Delhi government is set to launch the Durga e-auto scheme, offering 1300 pink electric autos in its first phase. Of these, 1170 are reserved for women and 130 for transgender beneficiaries. Applications will be scrutinized by district level committees with an online draw of lots if eligible applicants exceed the available quota. The initiative aims to promote self-employment, dignity and cleaner transport. From empowering women in Delhi, let's move to Andhra Pradesh, where preparations are underway for a grand celebration of faith and culture.
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में दशहरा उत्सव के सुचारू आयोजन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुविधा, बेहतर यातायात व्यवस्था और वीआईपी यात्राओं के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा उत्सव 2.0 और राष्ट्रीय सरस मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की। 13 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सरस मेले में 576 स्टॉल लगेंगे, जहां महिला स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे।

0: After culture and tradition, we now turn to Ladakh, where a bike rally carrying the message of national unity and a drug-free India has set off for Gujarat. The Ladakh Police Bike Rally has received a ceremonial send-off in Kargil as it heads to Gujarat for the Rashtriya Ekta Divas celebrations. The rally aims to inspire young people to embrace a healthy, disciplined and drug-free lifestyle ahead of Rashtriya Ekta Divas on 31st of October.
1: राजमार्गों पर एकता के संदेश के बाद अब रुख करते हैं समंदर की ओर, जहां भारत और ब्रिटेन अपनी नौसैनिक साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल ब्रिटेन के प्लायमाउथ पहुंच गया है, जहां वो रॉयल नेवी के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 26 में हिस्सा लेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये अभ्यास गुरुवार तक दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। ये अभ्यास भारत ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षित खुले समुद्रों के साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
0: After news of international cooperation, we now head to Arunachal Pradesh, where new facilities dedicated to education and spiritual service have been inaugurated. Arunachal Pradesh Home Minister Mama Natung has inaugurated two monks' residential buildings, Turiyananda Bhavan and Niranjananda Bhavan, along with Gangotri Jaldhara at RK Mission Vidyapeeth in Lumdung, East Kameng District. He said the facilities would support the monks' contribution to education, spirituality and social service, while strengthening the vision of Viksit Arunachal and Viksit Bharat. And now, from community development to an issue that touches taxpayers and businesses across the country, GST. Here's an invitation to join tonight's special discussion.
1: और अब सामुदायिक विकास से आगे बढ़ते हैं एक ऐसे मुद्दे की ओर जो देश भर के करदाताओं और कारोबारियों से जुड़ा है, जीएसटी। आज रात 9:30 बजे हमारे द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जीएसटी भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में जीएसटी पॉलिसी विंग सीबीआईसी के आयुक्त गौरव सिंह श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। आप 0112371 0112371 7 0112371 7 0 6 या 0112334444 पर फोन कर सकते हैं। अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेजें या एक्स पर आस्क AIR हैशटैग के साथ पोस्ट करें। तो सुनना ना भूलें आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक।
0: And now it's time to turn to the sporting arena, where the Indian cricket team has registered a thrilling victory against the West Indies to take a lead in the series. India defeated the West Indies by 14 runs in the third T20 International at Indore's Holkar Stadium. Chasing 224, the West Indies managed 209 for 7 in 20 overs after India were bowled out for 223. With this victory, India lead the 5-match series 2-1. The fourth T20 will be played on Wednesday, 14th of October in Hyderabad.
1: और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने कल अपने आवास पर आयोजित जनता दरबार में क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और जनहित से जुड़े विषयों को गंभीरता पूर्वक सुना। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की बात सुनी जाए और उसे न्यायोचित समाधान प्राप्त हो। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कल गीता कॉलोनी में दिल्ली दृष्टि अभियान द्वारा आयोजित कॉर्नियल अंधत्व मुक्त दिल्ली विजन फॉर ऑल के अंतर्गत निशुल्क नेत्र जांच शिविर में भाग लिया। शिविर में लोगों की निशुल्क नेत्र जांच की गई। श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर नेत्र स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचा

0: करने की दिशा में ये एक सराहनीय पहल है।
1: Moving towards Hyderabad, Rajya Sabha member Dr. K. Lakshman participated in the Nasha Mukt Bharat cycling ride organized by social organization Akshara Spurti to raise awareness against drug abuse. The ride began at Bal Hanuman Temple in Sitharampet, Ghosh Mahal constituency and ended at the Sardar Vallabhbhai Patel statue near the assembly premises. Many young people joined the ride, spreading the message of saying no to drugs. Dr. Lakshman warned that drug abuse harms health, breaks families, and destroys the future of youth. He urged young people to avoid drugs and adopt a healthy lifestyle. Organizers stressed that parents, teachers, and friends must work together to prevent drug abuse. The event concluded with a pledge to build a drug-free society.
0: अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अगले 6 से 8 महीनों में सूखे से प्रभावित किसानों और ग्रामीण समुदायों को सहायता देने की योजना की घोषणा की है। इन उपायों में रोजगार सृजन, अनाज वितरण, पेयजल आपूर्ति और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना शामिल है। लंबे समय तक चले सूखे ने प्रमुख फसलों को नुकसान पहुँचाया है और अगले कृषि मौसम की संभावनाओं को भी प्रभावित किया है। सरकार जल निकायों की मरम्मत करेगी, जहां जरूरत होगी वहां टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति करेगी और सूखा राहत तथा फसल बीमा के लिए केंद्र सरकार से सहायता मांगेगी। मुंबई की एक और खबर, बृहन्मुंबई नगर निगम BMC आज से सक्रिय ट्रैकिंग सिस्टम के बिना निर्माण अपशिष्ट ले जाने वाले वाहनों पर ₹25,000 का जुर्माना लगाएगा। मुंबई मलबा नियंत्रण और ट्रैकिंग सिस्टम पर पंजीकरण न कराने वाले निर्माण स्थलों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से कचरा फेंकने से रोकना और प्रदूषण को कम करना है। BMC ने सभी 26 नगर निगम वार्डों को नए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। मुंबई की एक और खबर, महाराष्ट्र सरकार मुंबई के एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पालतू पशुओं की देखभाल का प्रशिक्षण शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है। कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम से व्यवहारिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलेगा और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने पालतू पशुओं के मालिकों और उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
1: From Mumbai, let's move towards Bengaluru. As many as 541 trees in Bengaluru are at risk of being felled or relocated due to power infrastructure expansion and road development works at 3 locations. Of these, 337 trees will be affected by a KPTCL power transmission project in Hudi, while another 204 could be impacted by road projects in Hudi and Yelahanka. The Greater Bengaluru Authority has directed KPTCL to plant 10 saplings for every tree felled or relocated and maintain them for 5 years. All 8,000 philately passports released by Karnataka Postal Circle on the 10th and 11th of this month sold out within hours, drawing huge crowds of enthusiasts and collectors. Bengaluru accounted for 3,500 passports, while Mangaluru, Mysuru and Belagavi received 1,500 each. Hundreds of collectors queued outside Bengaluru GPO from 2 a.m. The passports, priced at ₹600, feature 100 unique pictorial cancellations.
0: अब पश्चिम बंगाल की खबर। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष उच्च शिक्षा के दाखिलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के दाखिलों में 75% से अधिक की वृद्धि हुई है। दाखिल लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15,729 से बढ़कर 27,599 हो गई है। स्नातक कॉलेजों में दाखिलों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। इन कॉलेजों में दाखिल लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,61,000 से बढ़कर 3,92,000 हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस वृद्धि का श्रेय पारदर्शी काउंसलिंग और योग्यता आधारित दाखिलों को दिया है। अब और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं, पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के।

0: मौसम का हाल। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। यहाँ का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। यहाँ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं तन्वी से।
1: Chennai is likely to see a partly cloudy sky, and just like Chennai, Bangalore and Hyderabad, all of them are likely to see a partly cloudy sky but with haze. The temperatures are expected to range between minimum of 27 degrees and maximum of 36 degrees Celsius for Chennai. And if we talk about the temperature for Bangalore, the minimum is expected to be 20 degrees while the maximum may reach 31 degrees. And for Hyderabad, temperature are expected to range from 22 degrees to 35 degrees Celsius. And Manoj, in the morning when I was coming here, it was raining. And that indicates that...
0: दिन भर बारिश होगी.
1: Absolutely.
0: जी हाँ जी.
1: And the winters are here.
0: जी हाँ जी. और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 12 अक्टूबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
1: Let's begin with the year 1967 when the Parliament of India enacted the landmark All India Institute of Medical Sciences AIIMS Amendment Act, strengthening medical education, clinical research and national healthcare infrastructure across the country.
0: 1968 में आज ही के दिन इक्वेटोरियल गिनी ने 190 वर्षों के स्पेनिश प्रशासनिक शासन के बाद औपचारिक रूप से पूर्ण संप्रभुता हासिल की और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया।
1: In the year 1984, astronaut Catherine D. Sullivan became the first American woman to perform a spacewalk, extravehicular activity, during NASA's space shuttle mission STS-41G aboard Challenger.
0: 1999 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक जनसांख्यिकीय गणना के अनुसार पृथ्वी पर मानव आबादी ने प्रतीकात्मक रूप से 6 अरब का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था।
1: In the year 2005, the landmark Right to Information RTI Act 2005 officially came into full force across India, empowering citizens with transparent access to public records and governance.
0: आज ही के दिन 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती और अंतिम तकनीकी तैयारियों की औपचारिक घोषणा की थी। और अब समय है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनका जन्मदिन, पुण्यतिथि या जयंती है।
1: Let's begin with Sir Arthur Hardin. Today is his birth anniversary. He was a British biochemist. He shared the Nobel Prize in Chemistry in 1929 with another biochemist for their investigations into the fermentation of sugar and fermentative enzymes. He was a founding member of the Biochemical Society and also the editor of the Biochemical Journal for 25 years.
0: आज पुण्यतिथि है राम मनोहर लोहिया की। उनका जन्म 23 मार्च 1910 को कस्बा अकबरपुर फैजाबाद में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। राम मनोहर लोहिया को भारत एक अजेय योद्धा और महान विचारक के रूप में देखता है। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें एक थे राम मनोहर लोहिया। अपनी प्रखर देशभक्ति और बेलौस तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया ने अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। डॉक्टर लोहिया सहज परंतु निडर अवधूत राजनीतिज्ञ थे। उनमें संत की संतता, फक्कड़पन, मस्ती, निर्लिप्तता और अपूर्व त्याग की भावना थी।
1: And today is the birth anniversary of Luciano Pavarotti, an Italian operatic tenor who during the late part of his

आज जयंती है पंडित शिवनाथ मिश्र की। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1943 को हुआ है। वे भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। काशी संगीत घराने को सितार वादन के क्षेत्र में पंडित रविशंकर के बाद पंडित शिवनाथ मिश्र को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। पंडित शिवनाथ मिश्र ने इस सम्मान को कला का सम्मान बताते हुए इसे काशी वासियों, अपने गुरुजन और बनारस घराने को समर्पित किया।

आज जन्मदिन है सुहासिनी राजा राम नायडू का। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1981 को बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ है। जिन्हें उनके स्क्रीन नाम स्नेहा से जाना जाता है, वे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने कुछ मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। स्नेहा ने 2017 में अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन और आर्य द्वारा निर्मित फिल्म द ग्रेट फादर में ममूटी के साथ अभिनय किया था। उन्होंने मोहन राजा द्वारा निर्देशित वेलाईकरण में अभिनय किया। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया एक गीत।

0: Bangalore, Karnataka. In the year 1975, at the age of just 26, her viewing of an Odissi dance recital inspired her to become a student of Guru Kelucharan Mohapatra, and under the Guru's tutelage, she learned to dance. In 1989, Prathama started building Nrityagram, situated on the outskirts of Bangalore, and it became India's first free dance Gurukul village for various Indian classical dances, consisting of 7 Gurukuls for the 7 classical dance styles and 2 martial arts forms, Chau and Kalaripettu. Nrityagram was inaugurated on 11th May 1990 by the then Prime Minister V.P. Singh.
1: और अब तन्वी, आप ध्यान दीजिएगा. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो. यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो. हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो. यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो. किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो. ये रचना है निदा फाजली की. आज जयंती है निदा फाजली की. उनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ है. वे आधुनिक उर्दू शायरी के बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं. ये शायर हिंदी के पाठकों के लिए भी उतना ही सुपरिचित है जितना उर्दू के पाठकों के लिए. इनका पूरा नाम मुक्तिदा हसन निदा फाजली है, जो बाद में निदा फाजली के रूप में प्रसिद्ध हुआ. उनकी मुख्य रचनाएं खोया हुआ सा कुछ, लफ्जों के फूल, आंखों भर आकाश, मोर नाच आदि हैं. उन्हें 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं उनकी लिखी कुछ फिल्मी गजलें.

0: और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन

0: तीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
1: मेरा युवा भारत संगठन
4: यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका

0: निभाने वाला है।
1: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
1: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन,
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक

0: हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडबरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123104818 01123107717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता, लोकशक्ति की खबर है। युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है। दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। YouTube पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines.

0: और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: நவராத்திரி இசை விழா நிகழ்ச்சியில் இதுவரை திரிசூர் வி ராமச்சந்திரன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். எம் ஏ சுந்தரேஸ்வரன் அவர்கள் வயலின், உமையாள்புரம் மாலி அவர்கள் மிருதங்கம், ஹெச் சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கட்டம். அடுத்த நிகழ்ச்சி பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் சில நொடிகளில். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों को नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार

0: के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। पुलिस ने वाहन चालकों से ये भी कहा है कि वे प्रभावित इलाकों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने देश में विकसित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalay in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possess the talent and potential to provide them.
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
1: Delhi government is set to launch the Durga e-auto scheme to create safe, dignified and sustainable self-employment opportunities for women and transgender persons. The Durga scheme, that is Driving Upliftment and Rozgar for Women and Transgender Initiative, will also promote clean and inclusive mobility across the national capital. The government has informed that the scheme will facilitate the allocation of 30

0: யூ ஹாவ் த பொட்டன்ஷியல் டு ப்ரொவைட் திஸ் தோஸ் சொல்யூஷன்ஸ்.
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की.
0: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा.
1: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी जोर दिया. उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ज्ञान हासिल करने के साथ उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है. सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 घायल हुए थे. यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है. उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है. पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए गए हैं. हूतियों ने सऊदी अरब के सभी हवाई अड्डों को संभावित निशाना बताया है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा. वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रेटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है. सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है. दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है. दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है. दूतावास ने घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सऊदी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है. भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-02-471234 पर संपर्क कर सकते हैं. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंक्रीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया. जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं. स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है. सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है. इस बीच विदेश मंत्रालय ने कल होरमोज जलडोमरो मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की निंदा की है. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है. हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है. श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया. जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए. अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस से डीजल आयात की अनुमति देने के फैसले की वैधता पर सवाल उठाए हैं. सांसदों का कहना है कि यह फैसला वर्ष 2022 के उस कानून के खिलाफ है, जिसके तहत यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने तक रूस के साथ इस तरह के व्यापार पर रोक है. सांसदों ने यह भी बताया कि ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले पर ना तो कांग्रेस से विचार विमर्श किया और ना ही उसके औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कोई जानकारी दी, जबकि कानून के तहत ऐसा करना जरूरी है. शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने घोषणा की थी कि रूस तत्काल अमरीका और वैश्विक बाजार को 300,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा. अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने कल रात ट्रंप प्रशासन के उन टेलीविजन विज्ञापनों के प्रसारण पर अस्थायी रोक लगा दी, जिनमें करदाताओं के पैसे से राष्ट्रपति का राजनीतिक प्रचार प्रसार किया जा रहा था. न्यूयॉर्क की संघीय जिला न्यायाधीश जेनिफर एल रोशोन ने यह आदेश उन संगठनों के पक्ष में दिया जिन्होंने इन विज्ञापनों को सरकारी धन का अवैध इस्तेमाल बताया.

0: करते हुए चुनौती दी थी। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडब्रू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी योंगयांग के पास इलाके से दागी गईं। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार दो मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। ये प्रक्षेपण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने देश में विकसित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया था। मेक्सिको के प्रशांत तट पर कल शक्तिशाली चक्रवाती तूफान साइमन ने दस्तक दी। श्रेणी 4 के इस तूफान के कारण जलिस्को राज्य के तटीय इलाके में तेज हवाएं और तेज बारिश हो रही है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल यूटो वालाटा के आसपास आज भी तूफान का असर बने रहने की आशंका है। तूफान के खतरे को देखते हुए जलिस्को राज्य के 22 तटीय नगर निकायों में स्कूलों को बंद रखा गया है। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्षदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 223 रन बनाए। वहीं अभिषेक शर्मा ने 69 रन की पारी खेली। अर्षदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 आज अमेरिका के लॉस वेगास स्थित नेवादा विश्वविद्यालय के थॉमस एंड मैक सेंटर में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 18 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें दुनिया के 600 से अधिक युवा पहलवान 3 ओलंपिक शैलियों ग्रीको रोमन महिला फ्री स्टाइल और पुरुष फ्री स्टाइल में 30 किलो वर्ग में मुकाबला करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 139 लोगों की मौत और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
0: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: நேயர்கள் ரசித்துக் கொண்டிருப்பது சுகுமான ராகங்கள் வழங்கிக் கொண்டிருப்பது 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் FM கோல்ட் அலைவரிசை. தொடரும் பாடலின் படம் ரோஜா. பாடலை பாடியுள்ளவர்கள் உன்னிமேனன், சுஜாதா. பாடல் ஒலிக்கும் நேரம் 10:42:57.

0: கேட்ட அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरुनानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों

की मौत हुई थी और 308 घायल हुए थे। हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्र क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बिजली स्टेशनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कोयले का पुनर्वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि माँ ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित

युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली हरियाणा पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अब है हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका

0: स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
3: स्मैश द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से विमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो विमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
4: आई वेलकम आवर डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। दिस डाइवर्स कंपोजिशन प्रोवाइड्स ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस नेशनल लर्निंग। That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल

0: स्वतंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
2: योग से हमें वो आत्मविश्वास

0: आवश्यकता बढ़ी है।
1: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
0: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4

0: बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: திரைகானம் கேட்கலாம். அலைப்பாயுதே திரைப்படத்திற்காக சாதனா சர்கம் பாடியிருக்கும் பாடல்.

0: செபி மூலம் இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की சமாதான் தீதி.
3: தாஜ்மஹால் திரைப்படத்திற்காக சுஜாதா பாடியிருக்கும் பாடல்.

0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में बुधवार तक चलने वाले ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनैतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उनके प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस अवसर पर श्री सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानवाधिकारों की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देश भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल हैं। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी और विमान अनुरक्षण अभियंता के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट देख सकते हैं, igrua.gov.in। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आंतरिक सम परीक्षा अधिकारी और सहायक अभियंता का एक एक पद

0: कार्यकारी और सहायक अभियंता का एक एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, तैनाती का स्थान, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.hindiwishw.org। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अनुसंधान विभाग में अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग तथा अन्य विभागों में आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए देख सकते हैं वेबसाइट home.iitd.ac.in। मंत्रिमंडल सचिवालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी वेतन स्तर 7 के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है और इसके लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 21 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं वेबसाइट cabsec.gov.in। CETF बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल्स में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कनिष्ठ अधिकारी JCO 4 पद, सिपाही सामान्य ड्यूटी 61 पद, सिपाही क्लर्क 2 पद, सिपाही रसोईया 1 पद, सिपाही हाउसकीपर 1 पद, सिपाही धोबी 1 पद, सिपाही ड्रेसर 2 पद, सिपाही दर्जी 1 पद और सिपाही स्टूअर्ड 1 पद। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक विभाग सहायक आयुक्त जहाज रानी के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। चयन के लिए आवश्यक नियम और शर्तों संबंधी विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं 10 से 16 अक्टूबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र के अंक में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में महाप्रबंधक भूमि अधिग्रहण एवं संपदा प्रबंधन का एक पद रिक्त है और पदों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.nhai.gov.in। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक निदेशक, सहायक वन संरक्षक, निरीक्षक आशुलिपिक ग्रेड 1, आशुलिपिक ग्रेड 3, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: रूप हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए धैर्य, निरंतर प्रयास और अपने इरादे पर टिके रहने का हौसला। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ समाचार प्रभाग के कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
1: Hello, Vaishnavi, and a very good afternoon to you. Yes, you rightly said, this festival of Navratra honors Goddess Durga and her various manifestations representing strength, courage, wisdom, and cosmic energy. Her worship teaches devotees the power of emotional resilience, focus, and perseverance. It inspires seekers not to give up during hardships and to understand that meaningful growth requires time and steadfast commitment. Of course, praying with to Brahmacharini God or any other form of God of Durga, it helps us calm our mind, it builds our inner strength and cultivates self-control and in the spiritual journey of life, I would say.
0: Ji.
1: And Vaishnavi, I would like to add to it that what a beautiful morning it was today. Delhi NCR woke up to a heavy rain, thunderstorm and followed by a lovely weather in the city this morning. Enjoy the weather, friends, but yes, be alert of the traffic advisories in the central Delhi before venturing out. We will certainly keep you updated about what's going on latest in the city and nearby. So stay tuned to Akashvani. Shall we start with what's making news at this hour of the day, Vaishnavi?
0: बिल्कुल। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया।
1: Chief Justice of India, Justice Suryakant, says Supreme Court doors open to every Indian citizen.
0: सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई।
1: Jantar Mantar in New Delhi, no longer a protest site. Delhi police designates three new venues for protests and demonstrations.
0: और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान।
1: And now, Vaishnavi, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about, hold on, Nimavashi, and also about World Sloth Bear Day. Nimavashi, you must be surprised what type of a connotation is this. So today we are traveling to Japan to discover a beautiful tradition that teaches us how to protect nature while making room for development. The Nimavashi tradition, which literally means going around the roots or turning the roots.
0: ये सुनने में दिलचस्प लगता है। श्रोताओं, हम अक्सर देखते ही हैं कि सड़कें, इमारतें और दूसरी विकास परियोजनाएं बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसी पारंपरिक तकनीक है जिसकी मदद से बड़े और पुराने पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह लगाया जा सकता है?
1: Absolutely, it's called Nimavashi, a Japanese term that roughly translates to laying the groundwork. In horticulture, it involves carefully preparing a tree's roots before moving it to a new location. It's a wonderful example of how patience and planning can help preserve nature.
0: अनुजा, जैसा बता ही रही हैं, लेकिन किसी बड़े पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान नहीं होता है, और इसके लिए देखभाल की भी खास जरूरत होती है, क्यों? है कि
1: of course. The process is not at all easy. It requires a tremendous care. First, arborists examine the tree and they gradually prune some of its outer roots, sometimes months or even years in advance. This encourages the growth of a compact root system with plenty of fine roots that absorb water and nutrients. And once the roots are ready, what happens next?
0: अनुजा, इसके लिए पेड़ की जड़ों के आसपास की मिट्टी को सावधानी से खोदा जाता है, फिर जड़ों और उनके साथ लगी मिट्टी के पूरे हिस्से को बोरी के कपड़े या पुआल से लपेटकर मजबूती से बांधा जाता है ताकि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। पेड़ के आकार और वजन के अनुसार उसे उठाने और दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्रेन और दूसरे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।
1: वाओ, एंड द न्यू लोकेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड जस्ट एज केयरफुली। द ट्री इज प्लेस्ड इनटू अ स्पेशली डग ट्रेंच वेयर द सोइल इज फ्री फ्रॉम स्टोन्स एंड डेब्री दैट कुड डैमेज इट्स रूट्स। द एंटायर प्रोसेस कैन टेक मेनी मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द ट्री एंड द कंडीशंस।
0: बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पेड़ को दूसरी

नमस्कार श्रोताओं, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली माँ का ये

0: जगह लगाने के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना और नई जगह पर उसके पनपने की संभावना बढ़ाना है। इससे पता चलता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है।
1: And there's another fascinating side to this tradition. In Japanese culture, trees can hold deep spiritual significance. The Shinto tradition recognizes sacred presences in the nature, often associated with kami or spiritual beings.
0: बिल्कुल सही कहा अनुजा आपने। जापान में कुछ पुराने पेड़ों को पवित्र माना जाता है। वहाँ की लोक कथाओं में कोदामा नाम की आत्माओं का भी जिक्र मिलता है, जिनके बारे में मान्यता है कि वे पेड़ों में रहती हैं। ये मान्यताएं प्रकृति और पेड़ों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाती हैं।
1: सो निमावाशे इज मोर देन जस्ट अ हॉर्टिकल्चरल टेक्निक। It reflects a philosophy of working with nature rather than simply removing it whenever it stands in the way of progress.
0: बहुत सुंदर बात कही आपने। सोचिए, एक सदियों पुराना पेड़ जिसने कई पीढ़ियों तक आते जाते देखा है, उसे काटने के बजाय हम उसे कहीं और बढ़ने का मौका देते हैं। ये सिर्फ संरक्षण नहीं है, बल्कि ये भविष्य के प्रति एक प्रतिबद्धता है।
1: And perhaps that's the lesson we can all learn. Progress should not always come at the cost of nature. With knowledge, patience, and a little creativity, we can find ways to protect the living world around us.
0: विकास के साथ साथ पेड़ों को बचाने के लिए हम जापान की निमावाशी तकनीक अपना सकते हैं। जिम्मेदार नागरिकों के तौर पर हम पुराने पेड़ों को बचाने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। अपने समुदायों को उस पेड़ संरक्षण की पहलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और जब पेड़ों को बेवजह काटा जाए तो आवाज उठा सकते हैं।
1: We can also motivate others to consider eco-friendly alternatives before removing trees. By working together, we can promote a balance between development and environmental conservation, ensuring that future generations inherit a greener and healthier India.
0: बिल्कुल, हर बचाया गया पेड़ हमें एक हरे भरे और बेहतर भविष्य के करीब ले जाता है।
1: Remember, the next time you see a tree, Vaishnavi, think of it not as an obstacle in the path of development, but as a living part of our shared heritage.
0: तो आइए प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास की राह पर साथ साथ आगे बढ़े। और अनुजा, अब समय है कि हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं।
1: Absolutely. So moving on to our next topic of Dateline today, it's World Sloth Bear Day.
0: श्रोताओं, अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एक अनोखे भालू की। इसके शरीर पर घने बाल और पंजे लंबे होते हैं। ये जीव कीड़े भी खाते हैं। और क्या पहचान पाए हैं कि ये कौन सा भालू होगा?
1: In fact, I already said it. It's Sloth Bear Day today. जी. So a bear that loves insects. Aren't we talking about the sloth bear today then? So the aim is to generate awareness and strengthen conservation efforts around the unique bear species endemic to the Indian subcontinent. So we have more on the in this report right now.
2: Sloth bear is one of the 8 bear species found across the globe. They are identified by their very distinct long, shaggy dark brown or black fur, distinct white V-shaped chest patch and 4-inch long ivory-colored curved claws used for digging out termites and ants from rock-hard mounds. Sloth bears are very fond of honey, hence their alternative name is honey bear. They sleep for about 12 to 15 hours each day. Sloth bears do not hibernate because they live in warmer tropical and subtropical climate where food is available year-round. They help control insect populations like termites and ants and act as seed dispersers in forest ecosystems. Sloth bears are endemic to the Indian subcontinent with small populations in Nepal and Sri Lanka. 90% of the species population is found in India. They are found in all parts of the country except Jammu and Kashmir and northeastern states. They are classified as vulnerable on the International Union for Conservation of Nature IUCN Red List. They are listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India 1972. The species has the same level of protection as tigers, rhinos and elephants. This is Sanyukta Yadav for Parikrama.
0: और श्रोताओं, यहाँ पर हम आपके साथ एक ज़रूरी सूचना जारी करना चाहेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फ़ोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST में भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में

0: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 011-23-31-04-81 और 011-23-31-44-44 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: So let's begin with Delhi, where Union Minister Gajendra Singh Shekhawat today inaugurated the BRICS Theatre Festival 2026. The festival will be held till Wednesday. Talking exclusively to Akashvani News, Director of the National School of Drama, Chitranjan Tripathi, said that the three-day festival will feature 10 theatre groups presenting 11 plays.
2: आज से ये शुरू हुआ है 12, 13, 14 तक के तीन दिन चलेगा। दिल्ली में एनएसटी का अपना सभागार अभिमंच तथा एलटीजी कमानी श्रीराम सेंटर, वहाँ पर प्लेस चलेंगे। लगभग हर रोज 2-3 नाटक का मंचन होगा और भारत में 9 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो टैगलाइन है ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल का, शेयर्ड स्टोरीज। सो शेयर्ड स्टोरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अगर शेयर नहीं करेंगे अपनी अपनी सिविलाइजेशनल स्टोरी को, अपने अपने कंटेम्प्रेरी स्टोरी को, रियलाइजेशन को, तो हम वसुधैव कुटुंबकम बनने में असफल रहेंगे।
0: ये महोत्सव कलात्मक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक विविधता और साझा मानवीय अनुभवों का जश्न मनाने के लिए थिएटर डायरेक्टर, कलाकार, विद्वान, राजनयिक और ब्रिक्स के सदस्य व सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस, वियतनाम, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और इथियोपिया शामिल हो रहे हैं।
1: एंड नाउ वी टेक यू ऑल टू कोलकाता। Marking a major milestone in India's wildlife conservation efforts, the first phase of the Tiger Reintroduction Program was launched on the 2nd of this month with the release of tigress in West Bengal's Baksa Tiger Reserve. We have more from our correspondent.
3: The initiative aims to restore a viable, self-sustaining tiger population in Baksa through scientifically guided interventions. Since 2018, the West Bengal government, with support from the National Tiger Conservation Authority, NTCA, and the Wildlife Institute of India, WII, has undertaken habitat restoration, pre-augmentation, and scientific monitoring under the Tiger Augmentation and Recovery Project. Officials said the translocated tigress will be closely monitored through telemetry, camera traps and field observations. Further augmentation will be undertaken only after scientific assessment of habitat pre-availability and population viability. Sushmita Mondol, Akashvani News, Kolkata.
0: और अब कोलकाता से चलते हैं रांची की तरफ। झारखंड का प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व 3 महीने के मॉनसून ब्रेक के बाद सैलानियों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया है। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शुरुआती 9 रिजर्वों में शामिल रहे इस वन क्षेत्र का वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक योगदान रहा है। आइए सुनते हैं पलामू टाइगर प्रोजेक्ट की समृद्ध विरासत और इसके बदलते स्वरूप पर केंद्रित हमारी खास रिपोर्ट।
4: छोटा नागपुर पठार की सुरम्य वादियों में फैला पलामू टाइगर रिजर्व देश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। करीब 1130 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य की ऐतिहासिक महत्ता और जैव विविधता पर प्रकाश डालते हुए वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर डी के श्रीवास्तव का कहना है कि पलामू टाइगर रिजर्व का इतिहास सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के शुरुआती वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की नींव है।
5: शुरुआत तो 1970 के समय में हुई, जबकि पूरे कंट्री में टाइगर की गणना की गई और उस गणना में पाया गया कि पूर्व बिहार में, जो अभी पलामू टाइगर रिजर्व का भाग है, इसमें 22 बाघ थे। इस 22 के अलावा इसके बाहर भी 10-12 बाघ विचरण करते थे और यहाँ पर 9 जो टाइगर रिजर्व बना कंट्री में भारत, तो पलामू भी एक उससे जुड़ा। इस तरह से पलामू की महत्ता तो बहुत अधिक है।
4: उल्लेखनीय है कि इस नए पर्यटन सत्र में वन्य जीवों के दीदार के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं बाघों के कुनबे को बढ़ाने के लिए रिजर्व में पुनर्वास कार्यक्रमों पर भी तेजी से काम चल रहा है। पर्यावरण विदों के अनुसार स्थानीय समुदायों का सहयोग और पर्यटकों द्वारा वन्य नियमों का अनुपालन ही पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के अस्तित्व को अक्षुण्ण

0: रिकॉर्ड रख सकता है। परिक्रमा के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह के साथ रांची से पूनम करकेटा।
1: And we have something from Shillong now. The second edition of the reverse buyer-seller meet was held in Shillong with the aim of connecting MSMEs with domestic and international buyers. More than 300 entrepreneurs and 32 national and international buyers are participating in it. We have a report on this.
2: Meghalaya is home to a rich tradition of handicrafts, handloom and agri-produce. Taking these traditional products to wider markets, Shillong hosted the second edition of the Reverse Buyer-Seller Meet at the State Convention Center on October 8th and the 9th. This event brought local entrepreneurs face-to-face with national and international buyers. Held in collaboration with the Federation of Indian Export Organizations, this buyer-seller meet brought together around 32 national and international buyers. Deputy Chief Minister Snyo Phalang Dhar inaugurated this two-day meet and highlighted its potential to create new business opportunities for this state's entrepreneurs. More than 300 entrepreneurs from all the 12 districts of Meghalaya participated in this meet. Traditional handicrafts, hand-woven textiles, lakadong turmeric that is unique to Meghalaya, along with fruit wines, jams and honey were among the products on display. The two-day event gave local businesses an opportunity to showcase their products and connect directly with buyers while also exploring new markets. The initiative was aimed at taking Meghalaya's traditional craftsmanship beyond local boundaries, opening new avenues for its entrepreneurs in national and international markets. For Parikrama, Anumita, Akashvani, Shillong.
1: And Vaishnavi, Goa is set to host India's first Edge City, bringing together global experts in science, technology and innovation. The three-week initiative in Mandarim aims to promote collaboration and strengthen Goa's emerging identity as a hub for innovation and entrepreneurship. Our correspondent reports on this.
3: The Edge City India, a three-week pop-up village, will be held in Mandarim in North Goa from October 11th to November 1st. Around 800 delegates, including entrepreneurs, scientists, engineers and researchers from more than 60 countries, are expected to participate. Information and Technology Minister Rohan Khante said the event would focus on technology, science and innovation. The government aims to establish Goa's identity not just as a tourist destination, but also as a hub for innovation and entrepreneurship. The initiative will provide students, startups and local entrepreneurs in Goa with an opportunity to interact with global experts and explore new opportunities and avenues for collaboration. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
4: अब हम आपको पुणे की एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था के कार्यों से रूबरू कराएंगे जो समाज के उपेक्षित वर्गों, विशेषकर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है।
5: पुणे का फ्रीडम फाउंडेशन रिमांड होम और सुधार गृहों में रहने वाली महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करता है। इन महिलाओं के पुनर्वास के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। फ्रीडम फाउंडेशन की मृदुला जी का कहना है,
6: ऐसे बताया जाता है कि जिस क्षण मनुष्य को लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, कोई समझ रहा है, उसी समय उसका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। और इसी तरह ये हीलिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। और हमारा अनुभव है कि जब हम उनकी बात बिना किसी आलोचना के, बिना किसी उनको सिखाए हुए या गलत या सही है ऐसे बताए हुए अगर हम उनकी बात सुनते हैं, तो वो ओपनली बोलती है, अपने मन के विचार व्यक्त करती है और ऐसे बात करते करते ही वो लॉजिकल कंक्लूजन भी उससे दिखाई देता है।
5: नवरात्रि के अवसर पर जब देश में हर जगह नारी शक्ति का उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में समाज के इन उपेक्षित महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए काम करने वाली संस्थाओं के प्रयासों को, खासकर मृदुला जी जैसे महिलाओं के योगदान को सराहना भी आज प्रासंगिक होगा। परिक्रमा के लिए माधवी कुलकर्णी, पुणे।
1: And in the business news for the day, benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points to settle at 22,363. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
4: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
7: आज हम बात करेंगे स्वाधीनता

0: सेनानी, लेखक, चिंतक और राजनेता राम मनोहर लोहिया की। उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 में हुआ था। उनके पिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया का झुकाव आरंभिक जीवन से ही गांधीवादी दर्शन की तरफ हो गया था और 10 वर्ष की उम्र में वो सत्याग्रही बन गए थे।
1: लोहिया समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए और 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की। लोहिया ने जब 1 जून 1940 को गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से लेख लिखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। भारत को आंतरिक रूप से स्थिर करने के प्रयासों के अंतर्गत दिसंबर 1940 में अंग्रेजों ने अन्य नेताओं के साथ लोहिया को रिहा कर दिया।
0: 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब प्रमुख नेता जेल में थे तो लोहिया ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। स्वाधीनता सेनानी उषा मेहरा के साथ लोहिया ने बंबई में सीक्रेट रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित किए। उन्होंने कलकत्ता में आंदोलन को पुनर्जीवित किया और बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चले गए, लेकिन मई 1944 में उन्हें पकड़ लिया गया। लोहिया को लाहौर जेल ले जाया गया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया।
1: लोहिया ने अपने भाषणों और लेखों में विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों से एकजुट होने, अपने आसपास हिंसा की अनदेखी करने और अहिंसा के गांधी जी के आदर्श पर अडिग रहने की अपील की।
0: डॉक्टर लोहिया लगभग 650 भारतीय रियासतों के एकीकरण से बड़े राज्य बनाने का विचार देने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ऐसा विचार था जिसे बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक लागू किया। स्वतंत्रता के उपरांत लोहिया ने महान चिंतक और सांसद, अल्पसंख्यकों, निचले वर्ग के लोगों और महिलाओं के हितों के लिए लड़ने वाले के रूप में अमिट छाप छोड़ी।
1: जीवन के अंतिम दिनों में राजनीति के अलावा उन्होंने काफी समय भारतीय साहित्य, राजनीति और कला जैसे विषयों पर हजारों युवाओं के साथ चर्चा में बिताया। 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में लोहिया का निधन हो गया।
2: Today we are also remembering Kamini Roy, pioneering poet, educationist and women's rights advocate on her birth anniversary today. Her unwavering commitment to equality, education and women's empowerment continues to inspire generations to fight for justice. She is remembered as British India's first woman honours graduate and as a celebrated Bengali poet, a social reformer and a leader in the women's suffrage movement. She helped Bengali women win the right to vote in 1926. There was a famous quote by her which says, "Why should a woman be confined to home and denied her rightful place in society?" So that's why she's more famous as giving more power to women's empowerment and fight for their commitment to equality and education.
3: अनुजा, आज़ादी की लड़ाई में कुछ लोगों ने हथियारों और क्रांतिकारी विचारों से शुरुआत की तो कुछ ने सत्य और अहिंसा को अपना रास्ता बनाया। पेरिन बेन कैप्टन का जीवन इन दोनों धाराओं के बीच एक प्रेरक सेतु था। गुजरात के कच्छ में जन्मी पेरिन बेन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी और उन्होंने स्वदेशी, खादी, महिला जागरूकता और सामाजिक सुधार के कार्यों में भाग लिया। वर्ष 1921 में राष्ट्रीय स्त्री सभा के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1930 और 1932 में जेल भी जाना पड़ा था। देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1954 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: Today we also remember eminent Indian Urdu and Hindi poet, lyricist and dialogue writer Nida Fazli. It is his birth anniversary today. We remember him as a humanist voice who blended simple, accessible language with deep philosophical and Sufi sensibilities. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1998 for his Urdu poetry collection, Khoya Hua Sakuch, and the Padma Shri in 2013 by the Government of India. He is known for timeless classics like Hosh Walon Ko Khabar Kya from the movie Sarfarosh, and many good songs which were adapted in Hindi

0: श्रोताओं, चश्मे के लेंस से लेकर वैज्ञानिक उपकरणों तक कांच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल ग्लास के स्वदेशी उत्पादन को मजबूत बनाने में एक भारतीय वैज्ञानिक की बड़ी भूमिका रही। उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जन्मे डॉक्टर आत्माराम एक प्रख्यात रसायनज्ञ थे। उनके नेतृत्व में भारत ने ऑप्टिकल ग्लास के स्वदेशी उत्पादन की तकनीक विकसित की। वर्ष 1959 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: And today we also pay tribute to an Indian sitarist who was an exponent of the, who is rather an exponent of Benares Gharana School of Indian Classical Music. He was formerly a lecturer of the head of the music department in Varanasi and was awarded the Padma Shri in 2022. He's the only sitar player from Varanasi to have received Padma Shri award after Ravi Shankar. Let's hear a sitar recital by him.

आज एहसान नूरानी अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। शंकर एहसान लॉय की मशहूर संगीतकार तिकड़ी का हिस्सा एहसान नूरानी ने गिटार की धुनों से हिंदी फिल्म संगीत को एक अलग पहचान दी। 14 साल की उम्र में गिटार सीखने शुरू करने वाले एहसान ने दिल चाहता है, कल हो ना हो और रॉक ऑन जैसे फिल्मों के संगीत में अहम योगदान दिया। फिल्म कल हो ना हो के लिए इस तिगड़ी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए आपको सुनाते हैं उनके फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் சர்மா. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष

0: गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
2: நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்பதற்கு முன்
3: நேயர்களே, இன்று 8:15 எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம் வழங்கும் ஹலோ ஃபார்மர் நேரலை நிகழ்ச்சி.
4: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन क्यों महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं, दालें भारतीय भोजन का अहम हिस्सा हैं। इनमें लगभग 20-25% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों के विकास और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। दालों में प्रोटीन के साथ साथ कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, इसीलिए दालों का पर्याप्त उत्पादन देश की पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में दालों की मांग बहुत अधिक है। देश की बड़ी आबादी अपने दैनिक भोजन में दालों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है ताकि लोगों को उचित कीमत पर दालें उपलब्ध हो सके और दूसरे देशों से आयात पर निर्भरता कम हो। श्रोताओं, इसी उद्देश्य से दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत सरकार ने वर्ष 2030-31 तक दालों का कुल उत्पादन लगभग 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाकर 1130 किलोग्राम करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तूर यानी अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले और बदलते मौसम के अनुकूल बीज उपलब्ध कराने की योजना है। ऐसे बीजों से फसलों को मौसम की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। मिशन के तहत 6 वर्षों में 87,50,000 मुफ्त बीज किट वितरित करने का और 1,26,00,000 क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का क्षेत्र भी बढ़ाना जरूरी है। इस मिशन के तहत दलहन की खेती का क्षेत्र 35,00,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030-31 तक कुल 310,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती करने की योजना है। इसके लिए 489 जिलों में क्लस्टर आधारित व्यवस्था अपनाई जा रही है। आसान भाषा में कहें तो जिन क्षेत्रों में दालों की खेती की अच्छी संभावना है, वहां किसानों को समूह के रूप में जरूरी सहायता दी जाएगी। इससे बीज, खेती की तकनीक और उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। धान की कटाई के बाद खाली होने वाले खेतों में दालों की खेती को बढ़ावा देना भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रोताओं, केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के माध्यम से किसानों को मूल्य सुरक्षा देने पर जोर दे रही है। विपणन सत्र 2024-25 में उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,400 रुपए प्रति क्विंटल था। इसे वर्ष 2026-27 के लिए बढ़ाकर 8,200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए से बढ़कर 8,450 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 6,700 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
0: श्रोताओं, सरकार ने किसानों से दालों की खरीद के लिए भी व्यवस्था की है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NEFED को इस मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। श्रोताओं, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य दालों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत देश में 1,000 दाल प्रसंस्करण इकाइयां यानी दाल मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन इकाइयों में दालों को साफ करने, छिलका हटाने, उनकी गुणवत्ता सुधारने और बाजार में बिक्री के लिए तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे। इससे दालों के प्रसंस्करण से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। श्रोताओं, अब सवाल है कि इस मिशन के लक्ष्यों की दिशा में भारत ने अब तक कितनी प्रगति की है और किसानों को इसका क्या लाभ मिल रहा है, आइए अब जानते हैं।
2: श्रोताओं, भारत में दालों के उत्पादन और खेती के क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2024-25 में देश में दालों का कुल उत्पादन 256,83,000 टन था। वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 274,09,000 टन हो गया। इसी अवधि में दालों की खेती का क्षेत्र 277,20,000 हेक्टेयर से बढ़कर 286,46,000 हेक्टेयर हो गया, यानी अधिक जमीन पर दलहन की खेती की गई और कुल उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। श्रोताओं, दालों की पैदावार में भी सुधार हुआ। वर्ष 2024-25 में प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 926 किलोग्राम था, जो

0: वर्ष 2025-26 में बढ़कर 957 किलोग्राम हो गया। देश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल दालों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। श्रोताओं, दालों के आयात और निर्यात के आंकड़े भी इस क्षेत्र में हो रहे बदलाव की जानकारी देते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 46,428 करोड़ रुपए की दालों का आयात किया। वर्ष 2025-26 में ये राशि घटकर लगभग 31,794 करोड़ रह गई। इस तरह आयात के मूल्य में करीब 31% की कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर भारत से दालों का निर्यात भी बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में दालों का निर्यात लगभग 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 970 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत अपनी दालों का निर्यात प्रमुख रूप से चीन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, अमेरिका और श्रीलंका को करता है। श्रोताओं, इन आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सरकारी खरीद की भूमिका भी अहम है। NCCF के दाल खरीद डैशबोर्ड के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 17 जून 2026 तक 9 राज्यों में कुल 10,55,000 टन दालों की खरीद की गई। इसके लिए किसानों को सीधे 7,047 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान जारी किया गया। इस व्यवस्था से 4,69,000 किसानों को लाभ मिला। श्रोताओं, में बात करते हैं मिशन के अंतर्गत तैयार की जा रही प्रसंस्करण सुविधाओं की। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 1,000 दाल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके पहले चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 528 इकाइयां आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की सुविधा विकसित करने के लिए 23 दाल प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई। इनमें से 18 इकाइयों का काम पूरा हो चुका है।
1: श्रोताओं, इस मिशन में डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि मैपर नामक एप्लीकेशन के माध्यम से खेतों की स्थिति, खेती के समूह और फसलों के प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी जुटाने में मदद मिलती है। इसी तरह साथी यानी सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसिबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल का इस्तेमाल बीजों की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से बीज उत्पादन से लेकर प्रमाणन और बिक्री तक की जानकारी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के जरिए किसानों, खेतों और फसलों से जुड़े जानकारी को जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे खेती की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने और फसल उत्पादन का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ई समृद्धि और विस्तार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन खेती से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल अधिक दालें पैदा करना नहीं, बल्कि किसानों को सशक्त बनाना और देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुणदीप सिंह। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता है, इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें. कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा रोहतगी.
0: थैंक यू अमित. Benchmark domestic indices decline, Sensex sheds over 500 points, Nifty settles at 22,363. Countries retail

0: inflation rises to 5.54% in September this year, and global crude oil prices rise over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों का नुकसान, निफ्टी 22,363 के स्तर पर दर्ज। सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.45% दर्ज हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की तेजी।

0: And before we give you the economic details, the stories, very important announcement for you, our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार आज कारोबार की शुरुआत में मजबूती के साथ तो खुले, लेकिन शुरुआती बढ़त कायम न रह सकी। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट से 548 अंक गिरकर 71,925 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices failed to hold their initial gains and ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points, nearly 0.8%, to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points or 0.7% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The Mid-Cap 100 index edged up marginally and the Small-Cap 100 index gained 1.4%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, hospitals shed 2%, FMCG fell over 1.3% and PSU banks dropped 1%. In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3% and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined and shares of 281 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पे दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ मांगली दिल्ली से।
1: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से। तो पहला क्वेश्चन ये कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है। तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो कालाबाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा, मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं? बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इसका थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए सर।
1: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
3: जोशी साहब, देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्यौहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहाँ तक सवाल स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए, स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाएंगे, कीमतें बढ़ने की आशंका

0: आशंका उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी, लेकिन हाँ उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ़ कीजिएगा, नवंबर के बाद जो है 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी कीमतों में गिरावट आए।
1: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended, after 8 weeks that the market closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
0: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is one of the big problems. So if you see the crude price is almost around $105 yes. a barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arabia. That means the more disruptions possible in the crude oil market. Hmm. Then there was expectation that inflation is expected to go up, as we have seen that inflation is now 5.54%. And that is giving a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike. Yes. So this was the third one. And the other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks. Yeah. So combination of all the bad news had an impact on the stock market. And market is still looking for some kind of positive news. But unfortunately, they are getting nothing. And that is why we are seeing a lot of selling pressure in the market.
2: Mumbai se agle shrota ke taur pe Ratnakar hamare saath maujood hain. रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लड रिलेशन में मैं मेरे लड़के के नाम, विशेष के नाम पर कर सकता हूँ क्या, ये सवाल है। और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे, ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहे?
0: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं? चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफ़र जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है। बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुँच जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेज़ी दिखेगी। जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में 3 हैं, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा।
0: गुड इवनिंग।
4: हाँ सर, एक सवाल अभी आपसे सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75। अब वो पिछले 3-4-5 दिन से देयर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, विच इज एडिंग टू द कोर इन्फ्लेशन फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय।
0: उनकी
4: सप्लाई तो ऐसे माहौल में थोड़ी सी रेगुलर होनी चाहिए।
0: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं तो जो 5.54% महंगाई के आंकड़े हैं उसमें एक

0: बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे अलावा और भी तीन सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ़ कीजिएगा भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और नींबू की बात करें, यानी कि टॉप 5 आइटम्स में 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति इसकी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। इस बार प्याज की पैदावार में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है। तो मदर डेयरी पे, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहाँ पर उपलब्ध है जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी मैंने देखा है। और बाकी जो जिसको कहते ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी, वो भी चल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है, वहाँ से नई फसल जल्दी ही बाज़ार में आएगी। तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं।
1: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
0: और नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है।
2: जी
1: शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में टिगर नहीं है, कच्चे तेल की कीमतों ने उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटिमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है। क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहाँ से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा, या बाजार को वहाँ से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
0: देखिए, पॉजिटिव तो वहाँ से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है, और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
2: जी,
0: ब्याज दर बढ़ती है तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक में ही पैसा रखो या ऐसे जगह पे रखो जहाँ आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है, और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी ऊँची है, और भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है, अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है। अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे। दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, और उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ गई है।
2: शिशिर, यू नो अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ triggers, but before I come take my question to you, we have the next caller with us online. Nitin is calling us from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: Namaskar ji.
2: Namaste. अपना सवाल पूछें।
3: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में एक साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, एक साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड आएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनों के, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे तो उस सिक्के को हम सेल करेंगे तो जो वैल्यू हम लाएंगे तो उसके बाद वो हमसे रिटर्न में लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरे लेते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है, और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे खरीद लिया है, तो एक साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी।
2: शिशिर, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं, जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं।
0: मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला आपने अगर एक साल के लिए ब्याज के लिए, एक साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है, और वहां पर आपने एक साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज, जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपने देखा होगा कि आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको एक साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो 3 महीने 6 महीने की बात नहीं, अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद

0: होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा। तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर और उसे बेचने जाते हैं, तो किसे आप बेच रहे हैं? किसी एक संगठित जगह पर बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं? और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पर जाते हैं तो आपको नकद तो मिल जाता है जो समय के भाव है। गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आपको उससे कम मिले, भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं।
1: जी, सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट, एज यू नो, अमित वाज सेइंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर, एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, it's, they are not getting positive triggers from anywhere. But for an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because there's a, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices, in the stock market, you know, share prices. And so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
0: certainly, because market always needs money as well as the patience. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
1: Yes.
0: So what happens that when there is a correction in the market, we say, oh, we are going to lose everything. But those are the, I mean, something, most of the time it is the notional loss.
1: Yes.
0: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stake at a stock at a very low price, that's really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
1: Yes.
0: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices. And you should also have some money put into the mutual fund.
1: Yes.
0: And apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold, that would be really good.
1: Right.
2: अगले श्रोता के तौर पे महाराष्ट्र से के शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना सवाल पूछिए।
3: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: मेरा क्वेश्चन ये था कि टियर टू जो सिटी है, मतलब टियर वन में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या बड़ा सिटी, वहाँ बंदरगाह होता है, पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत ज्यादा होता है। टियर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
0: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट हम आपको बताएं कि IT कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पर खोले हैं जहाँ पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहाँ पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहाँ पर खोले हैं। तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई हैं या फिर वहाँ पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है। तो आप अगर छोटे शहर में हैं या मझोले शहर में हैं तो वहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
2: शिशिर, अगर रुपये की स्थिति पर आते हैं, रुपये ने तकरीबन आज 1 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी। हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद CRR रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
1: CRR रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने।
0: देखिए, अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी यह असर कुछ समय तक बना रहेगा।
2: चलिए और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी और लंदन के शेयर बाजार 0.8% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
1: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated to 5.5 4% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank

0: of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83% recorded in August. According to the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas increased to 6.08%, while in urban regions it rose to 4.88%, and food prices continue to remain a key driver of inflation. A very brief comment from you.
1: Anubha, just one thing, it's a median target rate of 4%, which we have breached. In fact, that was breached last month itself. Now the concern is that if it exceeds 6%, then there will be a bigger problem. So, and as of now, we are expecting that it will breach.
0: It will breach.
2: Delhi se Shri NP Singh hamare saath maujood hain. Ji,
3: sir, good evening to the all panelists. I just want to know that it's about UPI. If the UPI amount is 3,000 and we divide the payment into 2,000 and 1,000 in two times, so then also it will attract the, you know, the surcharge.
1: If it is less than 2,000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2,000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2,000 rupees and 1,000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course it will. 2,000, for the 2,000 rupees it will, because 2,000 or more.
0: Gee.
1: So it will attract MDR. But please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer, it is a shopkeeper who has to pay at the time of getting money from the bank or the institutions.
2: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है. यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है. भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया. हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही. इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया. हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए. इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं. जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
4: हेलो सर, नमस्ते. नमस्ते, मैं आकाश दिल्ली से बोल रहा हूँ.
2: मेरे दो
4: सवाल है. पहला सवाल ये, मेरी FD बनी हुई है, तो उसमें एक साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया, तो दूसरा सवाल जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट करा है अभी, तो गोल्ड जैसे एफडी का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या एफडी में ही हमें बने रहना चाहिए, और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
1: देखिए, आपकी शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना है, उसी शर्त पे भुगतान होगा. ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है. रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज़्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही, तो आपको नुकसान होगा.
0: Gee. And let's move on to the next story. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Mike Woodford for developing macroeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments and central banks' ability to respond to economic fluctuations. The Nobel Committee said the economists developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
5: Yeah, my quick question to market mantra team and Sarit. Sir, जो भी गलत हो सकता था वो शायद हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है. अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो हैव वी टच्ड द रॉक बॉटम? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आपका क्या ओपिनियन? रिबाउंड
1: बाजार कितने स्तर पे जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थिति

0: परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां।
1: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर डबलिंग इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। मिस्टर गोयल सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द बिजनेस प्लीनरी अंडर द 16th सेशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक and Trade Committee in New Delhi today. The minister called upon businesses in both countries to translate the opportunities created by the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement into expanded trade, investment, partnerships and job creation. And let's move on to commodities now. Global crude oil prices reversed course and moved higher today amid skepticism over US President Donald Trump's announcement of energy ceasefire between Ukraine and Russia. Brent crude was trading 1.2% up at $105.99 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading over 1.2% higher at $92.98 per barrel at the time of writing this report.
2: घरेलू सराफा बाजार में सोना 0.9% की गिरावट से 1,48,061 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान से 2,20,295 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में, अगर दोनों चीज़ों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमजोर होगा, और कच्चे तेल की जहां तक बात करें, सऊदी अरब और उन जगह पर हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने, मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते।
2: जी शिशिर, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
1: Benchmark domestic indices decline. Sensex sheds over 500 points. Nifty settles at 22,363. Country's retail inflation rises to 5.54% in September this year. And global crude oil prices rise over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार बाधाओं को दूर करने और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर

0: बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के और संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान भी श्री राहुल गांधी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, मुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBT मैदान शामिल है। इसके साथ ही
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries. The Commerce and Industry Minister also addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. Mr. Goyal has emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policy making. He expressed confidence that India's economy would reach $30 trillion by 2047.
3: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. So you are an aging population, I have a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I'll remain below. So from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing large economy. I tell every minister, this is a paper, you put any growth rate you want and calculate your GDP in the next 23 years, up to 2047. Let's put the two numbers side by side and then realize There's no country in the world which will probably double their GDP.
2: Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to India

0: की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा CDPO और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और बृहस्पतिवार तक संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से क्लिनिकल प्रतिष्ठानों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। इसका उद्देश्य मरीजों को सोच समझकर इलाज का विकल्प चुनने में उनकी मदद करना, बिल से जुड़े विवादों को रोकना और स्वास्थ्य सेवाओं में भरोसा बढ़ाना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस समारोह में वन महानिदेशक और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव संतोष तिवारी सहित मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर महाराष्ट्र के नाशिक स्थित पंचवटी के रामतीर्थ यानी रामकुंड में 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक 3 दिन का धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, that is JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said, this will unlock new opportunities for businesses in both the countries. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to the INDIA bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said, he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
2: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body, has the right to approach us. Every citizen of India has this right. We will hear the grievances and address their concerns in accordance with the law and the legal framework. I received the letter yesterday and replied to it last night, and I have cited the reasons for expressing my inability to meet. I have maintained the confidentiality of the letter.
1: The centre today informed the Supreme Court that it has decided to regulate trade margins on anti-cancer medicines by capping them at 30% of the maximum retail price MRP, while the Apex Court called for a broader review of medicine pricing across the pharmaceutical sector. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Union Government, told a bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta that the centre would notify a list of cancer drugs to which the trade margin cap would apply. The development came after the Apex Court repeatedly questioned the substantial disparity between the price at which medicines are supplied to retailers and the MRP printed on them. Delhi Police

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

நேரம் 8:15. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.

0: நலத்துறை.
1: சார், விதை வாங்க பணம் தேவை, என்ன செய்யறது?
2: பிரதம மந்திரியின் கிசான் கிரெடிட் கார்டு வாங்குங்க, குறைஞ்ச வட்டியில தேவையான விவசாய கடன் கிடைக்கும்.
1: அப்படியா? இது ரொம்ப உதவியா இருக்குமே.
2: விவசாய செலவுகளுக்கு எளிய கடன் வசதி தருவது நம்ம பிரதம மந்திரியின் கிசான் கிரெடிட் கார்டு. அருகில் உள்ள தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியையோ அல்லது கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளையோ தொடர்பு கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளோட வளர்ச்சிக்கு கிசான் கிரெடிட் கார்டு உறுதுணையா இருக்கும்.
3: வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு.
2: இந்த முறை விதை, உரம் வாங்க பணம் கிடைச்சது ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு.
1: எப்படின்னா,
2: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்துல சேர்ந்தேன். ஆண்டுக்கு 6,000 ரூபாய் 3 தவணைகளா நேரடியா வங்கி கணக்குக்கு வந்துச்சுல்ல.
4: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் மூலம் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் 6,000 ரூபாய் நிதி உதவி நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் வழங்கப்படுகிறது.
5: நீங்களும் தகுதி பெற்றிருந்தால் அருகில் உள்ள பொது சேவை மையம் அல்லது வேளாண்மை துறை அலுவலகத்தை அணுகி பதிவு செய்து பயனடையுங்கள்.
3: வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு.
6: நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துருச்சு. ஹலோ ஃபார்மர்ஸ் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்துவிட்டு மறுபடியும் நாம அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். இப்போது உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவோர்
7: ரத்னா,
6: பி சரவணன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.
7: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
8: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மேன் முனீஷ் சர்மா. मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
9: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का

0: भी आह्वान किया है ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम

0: श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
3: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
2: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
4: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
5: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
2: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज

0: कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK. Targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate lists by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. An IMD forecast a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab and Chhattisgarh till tomorrow. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed the country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
2: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side, or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods. India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
1: Commerce and Industry Minister also addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. Mr. Goyal emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policy making.
3: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. So you are an aging population, I have a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I'll remain below 30. So from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing large economy. I tell every minister, this is a paper, you put any growth rate you want and calculate your GDP in the next 23 years, up to 2047. Let's put the two numbers side by side and then realize. There's no country in the world which will probably double.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे भारत की कर क्रांति, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की। साथियों, पहली जुलाई 2017 को वो तारीख थी जब भारत ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार देखा। रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष से एक नारा गूंजा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी से पहले देश में 17 तरह के अलग अलग टैक्स और 23 तरह के सेस लगते थे। हर राज्य की सीमा पर ट्रक घंटों खड़े रहते थे। जीएसटी ने उन सभी सीमाओं को मिटाकर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। तो क्या जीएसटी सच में आम आदमी, व्यापारी और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का विषय है वस्तु और सेवा कर, भारत की कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7176 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindiAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अभी हाल में हुई और उसमें बहुत सारे कर सुधार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इनको बहुत बड़ा परिवर्तनकारी गेम चेंजर बताया।
1: जी, इस बार जो 57वीं काउंसिल पे हमारा फोकस था जीएसटी प्रोसेस रिफॉर्म्स पे।
0: जी,
1: 56वीं काउंसिल पे रेट पे फोकस था, 57वीं पे प्रोसेस रिफॉर्म्स पे, जो कि डे टू डे हर बार जैसे कि बिजनेस की लाइफ साइकिल में उसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, लिटिगेशन, वो सब वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो वो सारी उसको सारे जो इश्यूज उसको आते हैं उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है।
0: बहुत अच्छा।
1: इसमें
0: तो क्या क्या ऐसे सुधार रहे जिनसे इस जो बैठक थी इसमें क्या ऐसे निर्णय रहे जिससे कि आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को लाभ हुआ?
1: जैसे मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो पहली चीज थी रजिस्ट्रेशन।
0: जी,
1: जब वो अप्लाई करता है तो अक्सर उसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
0: जी,
1: तो उसे हमने सरल किया। न सिर्फ उसके लिए अधिकारी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं पर हमने फॉर्म भी अपना चेंज किया। फॉर्म में जो उसको डॉक्यूमेंट देने हैं वो फॉर्म में ही ड्रॉप डाउन से हमने कर दिए।
0: जी,
1: तो उससे ये हो जाएगा कि उसको पता है कि क्या देना है, क्या
0: आसान हो गया।
1: कई चीज जहां पर वो सिस्टम रिस्क टू रेवेन्यू नहीं है कि वो रेवेन्यू को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां हमने ऑटोमेट कर दिया है। वो खुद डिक्लेयर करेगा और वो खुद ही हमारा सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा।
0: जी,
1: सो एक ट्रस्ट दी टैक्सपेयर का हमारा

0: वो हमने एक शुरू किया है
1: जी। इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए इस जो सुधार हुए हैं 57वीं परिषद में, इसमें क्या क्या ऐसे सुधार हुए जो अलग अलग लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं?
0: जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल
1: जी,
0: एक्सपोर्टर्स को रिफंड अप्लाई करना पड़ता था, रिफंड अप्लाई करता है तो वो अधिकारी के पास जाता है, उसमें समय लगता है अधिकारी को। अब जो है आगे चल के हम रिफंड को ऑटोमेट कर देंगे। अगर वो लो रिस्क है, सिस्टम ने देखा रिस्क है, लो रिस्क है तो उसको 100% रिफंड एक्सपोर्टर को तुरंत सिस्टम से मिल जाएगा।
1: वेरी गुड।
0: तो उससे बहुत जो अभी 60 दिन लगते थे वो होके एक दिन दो दिन में वो खत्म हो जाएगा।
1: बहुत बड़ी सुविधा,
0: बड़ी सुविधा
1: जी।
0: ऐसी कैश लेजर का रिफंड होता है, छोटा व्यापारी ईसीओ से सप्लाई करता है, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो करता है, वो अपना रिफंड अप्लाई करेगा तुरंत हाथों हाथ उसे रिफंड हो जाएगा, और ये 1 नवंबर से ही हो जाएगा चालू
1: जी।
0: सो ऐसी कई चीज़ें हैं छोटे व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, या जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, की इनपुट का रेट ज़्यादा है आउटपुट का कम है, तो उसका रिफंड भी हमने ऑटोमेट कर दिया। 90% रिफंड उसको अप्लाई करने के 10 दिन में शुरू में, आगे चल के वो इमीडिएट जब सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हाथों हाथ मिल जाएगा।
1: बहुत बड़ी सुविधा,
0: तो उससे बहुत आराम हो जाएगा व्यापारियों को।
1: और इसके अलावा कुछ सजा के प्रावधान हुआ करते थे, टैक्स समय पर नहीं भर पाए या कुछ तो इस तरह से, उनमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है
0: जी। अरेस्ट को बिल्कुल हटा दिया गया जीएसटी से
1: जी।
0: तो आगे चल के जब लॉ चेंज हो जाएगा तो कोई अरेस्ट जीएसटी में अधिकारी अरेस्ट नहीं कर पाएगा किसी को। दूसरा, हमने प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में जहाँ हम अपील फाइल करते हैं किसी के अगेंस्ट वो करने को
1: जी,
0: तो उसके भी हमने कई कानून जो जहाँ पर वो इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं वो हमने हटा दिए हैं। तो आगे चल के प्रोसिक्यूशन में आदमी को ये तकलीफ नहीं होगी, गलत इंटरप्रिटेशन, गलती हो गई और मुझे कोर्ट में उन्होंने वो कर दिया, फौजदारी का मुकदमा कर दिया,
1: वो तो मुकदमेबाजी से अब छूट
0: मिल जाएगी
1: जी। और हमारे श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, पहले श्रोता हरिद्वार से हैं, रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर जी।
1: जी पूछिए सवाल।
2: विशेषज्ञ को भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
2: सबसे पहले मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, आगामी सभी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अभी हाल ही में जो दिवंगत अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी, उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी।
1: रवि जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूं सर, अब की बार जो 57वीं बैठक हुई है उसमें क्या क्या कर सुधार हुए हैं, और सर मैं जानना चाहता हूँ कि अब की बार अरेस्ट से किस किस सजा को हटा दिया गया है, ये मेरा सवाल रहेगा सर।
0: अरेस्ट बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट का पावर नहीं रही है जीएसटी में। सो आगे चल के कोई भी ऐसा वो नहीं है ऑफेंस जिसको किसी को अरेस्ट किया जा सके।
1: तो आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि अगर समय पे कर नहीं चुकाया या कम कर चुकाया या और भी कोई हुई तो गिरफ्तारी की जो तलवार लटका करती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में जो कर प्रणाली थी
0: जी
1: कैसी थी, और उससे जीएसटी ने उसको किस तरह से चेंज किया?
0: जीएसटी के आने से पहले 17 कुछ कर थे जो जीएसटी ने अपने में समेट लिए हैं। उसमें एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय उत्पाद कर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, वो एक अलग, उसको रिटर्न फाइल करना अलग कंप्लायंस था, वैट का रजिस्ट्रेशन लेना था, वैट का अलग कंप्लायंस था, एक स्टेट में ही उसका दायरा था, तो एक स्टेट में ही उसका क्रेडिट था और एक स्टेट में ही सब था। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर भेजता था, अपना सामान बेचता था, तो उसे क्रेडिट नहीं मिलता था
1: जी।
0: तो जीएसटी ने क्या किया, ये जो और अलग अलग टैक्स ऐसे ही करके कुछ 17 टैक्सेस में वो रजिस्टर्ड था, जीएसटी ने वो खत्म करके एक टैक्स ले लिया है, प्लस एक पूरा देश एक ही उसमें कर दिया है। तो वन नेशन वन टैक्स का अर्थ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी वो देश में व्यापार करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं रहेगा कि मैं इस स्टेट में नहीं हूँ
1: जी।
0: तो जीएसटी ने उसे हर स्टेट में एक, उसको एक जैसा कर दिया, उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक मार्केट हो गया।
1: तो कुल मिला के वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का जो जीएसटी का नारा था वो कितना सफल हो सका है?
0: काफी हो गए, बहुत सफल हुआ है। अगर आप देखिए जीएसटी में, जब हम जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 66 लाख हमारे टैक्स पेयर्स थे, करदाता थे, अब वो 1,70,00,000 हो गए हैं 9 साल में,
1: लगभग 3 गुना से भी अधिक हो गए
0: जी। तो जी, जो कितने नए व्यापार आए जो जीएसटी में आ गए, कितने छोटे व्यापारी, जो हो सकता है टर्नओवर जो हमारा थ्रेशोल्ड है 40 लाख और 20 लाख उससे नीचे है।

0: वो भी जीएसटी में आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का उन्हें फायदा दिख रहा है,
1: लाभ मिल रहा है। जी, जी। और एक और श्रोता हमारे साथ हरियाणा के हिसार से जुड़ गए हैं, राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी।
1: जी सवाल पूछिए।
2: जो एक विकील शुक्ला जी उनके बारे में बता रहे थे, तो उनका मैं भी उनके सुन के बड़ा अफसोस हुआ, तो मैं उनको भगवान को उनको आत्मा में शांति दे।
1: जी राजी।
2: सवाल ये था जी, जब जीएसटी की बैठक होने को होती है तो कभी काफी मार्केट में रेट जो सामान के वो बढ़ जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बैठक होनी थी, उसके बाद सामान के कुछ रेट बढ़ जाते थे, इसके बारे में जीएसटी विभाग क्या करता है, इसके बारे में जानना। नमस्कार।
0: देखिए, जीएसटी विभाग तो रेट नहीं वो डिसाइड करता, वो तो मार्केट डिसाइड करता है, पर ये स्पेकुलेशन की होता है कि लोगों ने अपने की अंदेशा किया कि रेट घट सकता है बढ़ सकता है, तो लोग अपना वो कर देते हैं, परंतु इस पर जीएसटी विभाग कुछ नहीं वो कर सकता है। जीएसटी विभाग रेट्स डिसाइड नहीं करता, वो मार्केट करता है।
1: तो कुल मिला के जीएसटी डिपार्टमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो केवल मार्केट में ही होता है और दुकानदार या जो भी उत्पादक हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी आने के बाद आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महंगाई पर क्या असर पड़ा है?
0: कि जीएसटी की खासतौर पर 56वीं काउंसिल जो पिछली काउंसिल हुई थी इससे पहले सितंबर 2025 में, उसमें हमने 4 से 2 रेट कर दिए, 5% और 18% का रेट रहा, 12 और 40% का रेट
1: समाप्त कर दिया।
0: सो रेट इसलिए किया गया, और फिर सरकार ने ये भी वो कोशिश की कि वो बेनिफिट जो है, लाभ है, वो ग्राहकों को पहुंचा जाए, कि व्यापारी खुद ना रख लें रेट कम का लाभ। वो जी गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया, गवर्नमेंट ने कम कंज्यूमर हेल्पलाइन भी बनाई कि व्यापारी कि ग्राहक अपनी समस्या बता सके, रेट कोई पास ऑन नहीं कर रहा है। सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंश्योर किया कि जब भी रेट कट हो रहा है वो रेट कट ट्रांसफर होता है कस्टमर को।
1: जी बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ पर आ रही थी कि जीएसटी का लाभ जो पिछली 56वीं काउंसिल में जो हुआ था, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, कितने लोगों ने ख़रीदारी की कारों पर और दूसरे वाहनों पर, इसके अलावा टीवी, फ्रिज, इन सब पे कितनी सारी फ़ायदा हुआ था।
0: जी, अगर आप देखिए हमारा रेवेन्यू, हमने रेट कम किया पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। अब हमारा ऐसा रेवेन्यू आ गया कि हम 2 लाख करोड़ से कम आता है, तो हमें महीने का तो लगता है कि कम आया इस बार रेवेन्यू। तो जी, तो क्या हुआ है, रेट कम होने से लोगों की खरीदारी बढ़ गई, जिसकी वजह से रेवेन्यू,
1: परचेज पावर बढ़ी, उससे रेवेन्यू बढ़ा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि बहुत सारे, जब 56वीं काउंसिल की बैठक हुई थी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया, वो ऐसा ये किस तरह के प्रोडक्ट्स थे जिन पे जीरो?
0: जनरली फूड आइटम्स थे, जो कि खाने पीने की लोगों की वो चीज़ें थी, उसको उस पर 5 से 0 कर दिया गया रेट। दवाइयों पे, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उन पे हमने 5 से 0, काउंसिल के रिकमेंडेशन से 5 से 0 हुआ, ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। उसके साथ स्टेशनरी की चीज़, स्टेशनरी जो बच्चे स्कूल रहते हैं, स्कूल की पेंसिल,
1: वो स्टेशनरी,
0: कॉपी, नोटबुक, उन सब का दाम जीरो कर दिया, कि क्योंकि आगे चलते, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरी था, इसलिए सरकार काउंसिल ने डिसाइड किया कि उनके रेट्स जीरो कर दिए।
1: कुल मिला के आम लोगों के लिए उसमें काफी ऐसे लाभदायक निर्णय थे जो उनको फायदा पहुंचाया। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एनपी सिंह। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत सवाल है आपका।
3: सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। मेरे 2 क्वेश्चन है।
1: जी बोलिए।
3: सर, पहली बात तो ये है कि अगर वो कोई जीएसटी अधिकारी सरप्राइज विजिट पे आ जाता है
1: जी,
3: तो क्या उसे क्या चीज मांगी जाए जिससे वो पता लगे कि हाँ, ये वाकई में हमारे पास इसी चीज के लिए आया
1: जी।
3: और दूसरा मेरा एक बड़ा सरल सा आंसर आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारा इंटरस्टेट सारा परचेज है
1: जी।
3: जैसे हमारी पंजाब से आती है दिल्ली के लिए, तो हमारे पास आईजीएसटी तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है
1: जी,
3: लेकिन जब हम इधर सेल करते हैं, लोकल करते हैं, तो आधा आईजीएसटी आ जा सीजीएसटी हो जाता है, तो आईजीएसटी इकट्ठा है, तो वो हमें जब 1 साल के बाद हमें जो बच जाता है वो रिफंड मिलना चाहिए
1: जी।
3: ये 2 क्वेश्चन है सर
0: जी। पहला जो सवाल है अधिकारी वाला, अधिकारी जब आपके पास आता है तो वो एक ऑथराइजेशन, एक उसे एक ऊपर अपने अधिकारी से, जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी से उसको एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो एक चिट्ठी लेकर आएगा, उस लेटर पे DIN होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर

0: आप सीबीएसई वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, सही में अधिकारी ने इशू किया है कि ये ऐसे ही इसने खुद बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जब अधिकारी आए उससे पूछिए आपको क्या कोई परमिशन है आपके पास आने की, वो देखिए आप, उसका आई कार्ड चेक करिए कि वो एक सही में अधिकारी है कि नहीं, आई कार्ड चेक कीजिए, उसकी परमिशन देखिए, फिर उसमें एक डिन नंबर होगा, DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको चेक करिए सीबीआईसी की वेबसाइट पे, हमने लिंक दिया हुआ है, गूगल करेंगे DIN तो आपको आ जाएगा, वहाँ चेक करिए कि सही में वो अधिकारी है कि नहीं। जो आपका दूसरा सवाल है IGST क्रेडिट आएगा, तो IGST क्रेडिट और आपकी लोकल सप्लाई है दिल्ली में, पंजाब से आपके पास आ रहा है IGST का, आप पेड आपके पास इनपुट आ रहे हैं, तो उसको आप IGST को यूज़ कर सकते हैं CGST SGST अपना टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना IGST क्रेडिट को यूज़ करिए, CGST SGST क्रेडिट जो दिल्ली में आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ये जवाब उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनकी जो क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं थाने से, महाराष्ट्र के थाने से, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना था मतलब जो स्टेट के जो छोटे मोटे समझो जो टैक्स थे वो खत्म करके एक ही बना दिया, तो जो मतलब ये जो GST सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मतलब उनके इसमें, तो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये महीने का महीने या साल भर में मतलब इनको कैसे फंडिंग किया जाता है? और बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो कंप्लेंट रहता है कि टाइम पे मिलता नहीं है, और मतलब किस किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है मतलब कैसे तय होता है, थोड़ा बताइए।
0: जैसे गुरुनाथ जी, आपने महाराष्ट्र में कोई चीज़ खरीदी, आप महाराष्ट्र में ही आप थाने में जाके किसी दुकान से आपने चीज़ खरीदी, तो अगर आप बिल देखें तो उसमें उस चीज़ की वैल्यू कितनी रहेगी, उस पर CGST और SGST सीधे दिखेगा कितना। मान लीजिए उस पर 5% टैक्स है, 2.5% CGST, 2.5% स्टेट GST आपको दिखेगा, तो वो जो स्टेट GST है वो सीधे GST स्टेट को जाता है। दूसरा है, जैसे आपसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा था, पंजाब से उनको दिल्ली में आया, तो पंजाब से दिल्ली में आया तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। अब क्या होगा कि जब वो दिल्ली में आया उनके पास, या आपके पास, मान लीजिए आप ही कोई चीज़ दिल्ली से लेते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र में लेते हैं, तो आपके पास महाराष्ट्र में आया तो उस चीज़ का कंजम्पशन महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उस चीज़ को उपयोग आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, तो उसका जो GST रेवेन्यू, जो भी GST है उस चीज़ पे, उसे 50% उस स्टेट को सेटल होता है। जो वो स्टेट्स का इशू है वो सेटलमेंट वाला इशू है, क्योंकि उसमें कई सारी सप्लाई का पता नहीं रहता, क्योंकि सही से डिक्लेयर नहीं होता, टैक्स पेयर ने अगर सही से डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसमें वो डिस्प्यूट आता है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। पर आगे चल के जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो सेटलमेंट देखता है, और GSTN जो सेटलमेंट का सिस्टम वाला सेटलमेंट देखता है, दोनों लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है और कई एक SOP बनाया है ताकि आगे चल के हम इसको सुधार सकें, ताकि ये सेटलमेंट वाला जो इशू है, जो राज्य का पैसा है, वो इशू रिजॉल्व हो सके।
1: तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम वस्तु और सेवा कर भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हैं मनोज। मनोज ने सवाल किया है कि GST क्या छोटे व्यापारियों के लिए ज़रूरी है, और GST को साल में कितने बार भरना होता है?
0: GST, देखिए GST में एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, एक लिमिट है, उसके नीचे हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, आप ले सकते हैं चाहें तो, पर आपके लिए अनिवार्य नहीं है। वो है 40 लाख रुपये अगर आप गुड्स पे डील करते हैं, माल में वो करते हैं, और सेवा में करते हैं तो 20 लाख रुपए आपकी वो थ्रेशोल्ड है। छोटे व्यापारी अगर उससे नीचे हैं तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, पर वो लेना चाहे तो ले सकता है। लेने से ये फ़ायदा है क्योंकि उसको जितना उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका, उसे इनपुट वो जो भी उसने चीज़ें खरीदारी की उस पर टैक्स पे किया, उस टैक्स का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर अपनी आगे की GST जो पे करना है उसमें वो यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उस क्रेडिट को।
1: बिल्कुल।
0: रिटर्न्स हैं GST में, आपके पास हर महीने एक रिटर्न होता है, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका वो किसी से आप टैक्स सप्लाई करते हैं, उसे टैक्स लेते हैं, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपसे सामान खरीदता है। पर

0: जीएसटी में छोटे व्यापारी के लिए जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, जहां वो 3 महीने में एक बार एक रिटर्न फाइल करेगा पर मंथली टैक्स अपना पे करेगा। दूसरा, इस काउंसिल में एक कॉन्सेप्ट नेट को मंजूरी मिली है काउंसिल से, जिस पे अभी काम करके अगली काउंसिल में हम उसके वो डिटेल्स लेकर जाएंगे कि कैसे करना है। उसमें प्रपोजल था कि एनुअल रिटर्न, मतलब साल में एक रिटर्न फाइल करेगा और क्वार्टरली 3 महीने में एक पेमेंट करेगा। तो अभी जो 12 साल में हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी जगह साल में एक करेगा, और जो हर महीने पेमेंट कर रहा है उसका तीन महीने में एक बार पेमेंट करेंगे। तो उससे काफ़ी सरल हो जाएगा रिटर्न, छोटे व्यापारी के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम दुकानदार से सामान लेते हैं
1: जी,
2: तो हमें जीएसटी देना पड़ता है, तो अब हमें ये पता कहाँ कैसे चलता है कि दुकानदार हमें जीएसटी रेट पे दे रहा है, हमें पता कैसे चलता है कि कितना जीएसटी हमें हमसे लिया जा रहा है।
0: देखिए, अगर आप बिल देखें, जब दुकानदार को जब आपको चीज बेचता है उसे बिल देना अनिवार्य है, तो बिल देता है, बिल में आपको चीज़ की उस वस्तु की वैल्यू जो होगी वो मूल्य बताएगा, मूल्य के ऊपर जीएसटी रेट। अगर कोई चीज़ आप लेते हैं इस पर 18% जीएसटी है, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी दिखाएगा, तो आपको उसमें क्लियरली दिखेगा आपकी जो इनवॉइस है रसीद में कि उसमें जीएसटी कितना उसने आपसे चार्ज किया है और कितना एग्जैक्टली उसकी कितना वैल्यू था, कितना रेट था, वो सब उस रसीद पर लिखा रहेगा।
1: गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधों को कैसे बदला है? क्या ये सच है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये उदाहरण है?
0: जी, जीएसटी आप सोचिए एक कानून है जो कि हर स्टेट अलग से अपना अपना वैट चलाता था, उससे पहले सेल्स टैक्स था
1: जी,
0: कानून एक ही था पर सब स्टेट्स अपना अपना अलग एडमिनिस्टर करते थे, सेंटर अपना अलग करता था। जीएसटी में सब ने अपनी पावर्स वो दी, सब ने एक साथ बैठ के हर निर्णय एक साथ होता है। आप सोचिए 57 में मीटिंग्स हो गई, 57 मीटिंग्स में, काउंसिल मीटिंग्स में सिर्फ एक बार वोटिंग हुई लॉटरी पे
1: जी,
0: वरना कभी वोटिंग नहीं होती। हर निर्णय
1: सर्वसम्मति से
0: होता है, कंसेंसस से होता है, जहाँ हर स्टेट अपनी बात रखता है, हर स्टेट को अपना बात बोलने का मौका मिलता है। वहाँ तो यहाँ तक कि जब काउंसिल से पहले मीटिंग्स होती हैं कमेटी की, उसमें भी स्टेट के मेंबर्स होते हैं
1: जी,
0: तो उसमें भी स्टेट्स अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके बाद ही सर्वसम्मति से काउंसिल में जाता है। तो काउंसिल का एक सबसे बड़ा वो है कि एक साथ बैठ के एक चीज पे डिसाइड करना, एक चीज पे सर्वसम्मति से डिसाइड करना, वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जीएसटी का अनुभव सबसे अच्छा योगदान है।
1: सबसे बड़ा योगदान ये रहा, और इसके अलावा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी वरदान साबित हुआ है।
0: जीएसटी ने छोटे व्यापारी के लिए खासतौर पे छोटे व्यापारी का कंप्लायंस आसान कर दिया जीएसटी में, उसको पता है कि जितना उसने टैक्स दिया है उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना आगे कर भुगतान कर सकता है। छोटा व्यापारी जो ईसीओ के माध्यम से अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान बेचना चाहता है देश में, पर उसके लिए हमने और इस बार बहुत सरल कर दिया, वो ईसीओ का जो वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो कर सकता है उस स्टेट में जहाँ पर उसके खुद का ऑफिस नहीं है। तो उससे उसे क्या होगा, वो आराम से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा और अपना कर भुगतान कर पा, अपना सप्लाई करेगा और सप्लाई कर भुगतान आराम से कर पाएगा। तो जीएसटी ने उसको एक बड़ा आसान तरीका दे दिया है अपना व्यापार स्टेट से बढ़ा के पूरा देश में उसे करने का, वन नेशन वन टैक्स के तरह।
1: एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ दिल्ली में थोक मार्केट से कुछ सामान खरीदता है और वो सप्लाई करता है कुछ जगहों पर, क्या उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?
0: अगर उसका 40 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड उसका टर्नओवर
1: बिक्री हो जाती है,
0: बिक्री अगर साल की 40 लाख से ऊपर है तो उसको करना अनिवार्य है
1: जी, और उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जब अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा
0: जी। पर अगर आप देखें उसको, उसने जब चीज खरीदी तो उस पर उसने टैक्स पे किया
1: जी,
0: उसके लिए अच्छा है वो रजिस्ट्रेशन ले ले ताकि उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना कर भुगतान कर दे और वो जो टैक्स उसने सामान लेते हुए खरीदा है उसमें उसको इस्तेमाल
1: खाते में आ जाएगा
0: तो उसको लाभ है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर। अगर नहीं लेगा तो पूरा वाला टैक्स जो उसने पूरा इनपुट
1: सारा बेकार चला जाएगा,
0: वो सारा बेकार चला गया वो
1: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को जीएसटी को लेकर आपकी क्या सलाह है?
0: नए स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी पहला तो रजिस्ट्रेशन

0: सरल होना है, रजिस्ट्रेशन हमने सरल कर दिया उसके लिए, हमारे जीएसटी सिस्टम में आना उसके लिए बहुत आसान कर दिया इस काउंसिल के बाद। दूसरा, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसका रिफंड हमने सरल कर दिया, रिटर्न उसका टर्नओवर कम है तो रिटर्न्स हमने उसके लिए कम कर दिए,
1: लिमिटेड कर दिए,
0: लिमिटेड रिटर्न्स हो गए, एक टर्नओवर से नीचे रहेगा। देन उसका जो लिटिगेशन, मान लीजिए डिस्प्यूट होता है कोई टैक्स का कुछ होता है, तो उसके लिए हमने प्रोसेस बड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी। 10,000 रुपये से कम का नोटिस नहीं देंगे उसको, तो छोटे अमाउंट के नोटिस कम हो गए उसके लिए। जो लिटिगेशन प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक इशू किया है, पूरा एक सर्कुलर इशू करने जा रहे हैं कि कैसे करना है, तो एक ट्रस्ट रहेगा सिस्टम पे उसे कि जो हो रहा है सही हो रहा है मेरे साथ।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमाशंकर वाजपेयी जी। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जीएसटी में कटे हुए पैसा अगर कहीं गलत हाथों या गलत उससे जाता है तो हम उसकी शिकायत कहाँ करें?
0: देखिए, जीएसटी में अगर आपको लग रहा है कहीं चोरी हो रही है, कहीं बेईमानी हो रही है, तो आप अपने एक अपने अगर डीजीजीआई को बोल सकते हैं। डीजीजीआई जो है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो केंद्र सरकार का सीबीआईसी का इंटेलिजेंस विभाग है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। आप लोकल कमिश्नरेट में कर सकते हैं शिकायत कि ऐसा हो रहा है चोरी, एंड वो लोग उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें आगे क्या कैसे कार्रवाई की जाए। तो ऐसे करके आप शिकायत बता करके अपना वो बता सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारा एक और सवाल आपसे है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और ई वे बिल से व्यापार करना अब कितना आसान हुआ है?
0: ई वे बिल हर एक ट्रांसपोर्टेशन में, जब 50,000 से ऊपर का सामान एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में जाता है
1: जी,
0: सो ई वे बिल अनिवार्य है। ई वे बिल में शिकायतें आती थी कि चेकिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें डिले होता है, हरासमेंट होता है, तो इस काउंसिल ने इस बार देखा इसको, इशू को। आप क्या काउंसिल ने किया है, ट्रांजिट स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली से सामान जा रहा है केरला
1: जी,
0: बीच में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
1: कई स्टेट
0: पड़े, तो कोई सिर्फ दिल्ली और केरल ही उसे चेक कर पाएंगे, बीच वाले कोई चेक नहीं कर सकते।
1: बड़ी सुविधा,
0: बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ थी ट्रांसपोर्टर्स के लिए और ट्रेड छोटे व्यापारियों के लिए कि कोई भी चेक कर लेता था और फिर वो डिले होता है, समय लगता था चेकिंग में और सब में, तो वो चीज़ बंद कर दी इस बार काउंसिल ने। और सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सड़क पे खड़े होकर जो आ रहा है उसे चेक करेंगे, अब आपको बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए कि इस ट्रक में चोरी है, आपके पास पहले इंटेलिजेंस होनी चाहिए, संयुक्त आयुक्त रैंक के ऑफिसर के अप्रूवल चाहिए आपको कि वो अप्रूव करेंगे तभी आप जा सकते हैं, आपके पास क्लियर इंटेलिजेंस होनी चाहिए यही ट्रक में चोरी है
1: जी,
0: तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा ई वे बिल की उसमें।
1: गौरव जी, एक और सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जीएसटी ने भारत को विदेशी निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया है?
0: जी, जीएसटी ने एक सर्टेनिटी दिलाई है विदेशी निवेशकों को कि जीएसटी है तो पूरे देश में एक ही टैक्स है
1: जी,
0: अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होंगे। एक जीएसटी काउंसिल है जो कि जब भी उनकी समस्याएं आती हैं तो जीएसटी काउंसिल उनको सुनता है। जीएसटी काउंसिल ने 250 से अधिक सर्कुलर्स इशू किए हैं जहां भी ट्रेड को दिक्कत होती थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो जीएसटी एक सर्टेनिटी, जो टैक्स सर्टेनिटी चाहिए निवेशक को
1: जी,
0: वो जीएसटी ने दिलाई है।
1: और इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है कि कई अर्थशास्त्री कहते थे कि जीएसटी ने छोटे कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया है।
0: अब हमारे यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन हमारे 67 लाख से बढ़ के 1.7 करोड़ हो गए हैं
1: जी,
0: तो छोटे आदमी बहुत सारे जीएसटी में आए। जीएसटी ने एक फॉर्मलाइज कर दिया इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी काफ़ी कैश बेस्ड थी, काफ़ी वो थी, बिखरी हुई थी, उसको हमने फॉर्मलाइज करके जीएसटी ने एक फॉर्मल चैनल पे ले आया है जीएसटी।
1: तो श्रोताओं, जीएसटी ने साबित कर दिया है कि जब एक देश एक सोच से चलता है तो परिवर्तन जरूर आता है, सुधार की ये यात्रा जारी है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों को इतने आसानी से दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह

0: तो बीच में 40।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर

0: Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Michael Woodfett for developing macroeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments' and central banks' ability to respond to economic fluctuations. And India and the European Commission have agreed to strengthen cooperation on carbon markets and the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism, or CBAM. The understanding emerged during a meeting between Power Secretary Pankaj Agarwal and Gerasimos Thomas, Director General for Taxation and Customs Union, in New Delhi today. Discussions focused on India's carbon market development, carbon pricing mechanisms and monitoring, reporting and verification systems. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। मंगोलिया ने अपनी महत्वपूर्ण तेल शोधन परियोजना में भारत के अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तालिबान ने पाकिस्तान पर समाधान वार्ता प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाते हुए इसे उसकी विफल नीति बताया और अमरीकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इस वर्ष के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। उन्होंने कहा कि व्यापक समझौते ने व्यापार विस्तार, नए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और नई उत्पाद श्रृंखलाओं को शुरू करने के कई अवसर प्रदान किए हैं। विश्व दर्पण के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना ने आज दोर्नुगोबी प्रांत के अल्तान शिरेसूम में तेल शोधन परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भारत के निरंतर सहयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
3: उलान बतार स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस रिफाइनरी के शुरू होने से मंगोलिया में ही परिष्कृत ईंधन का उत्पादन संभव हो सकेगा। उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने में मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गुदसुरवे की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 में मंगोलिया यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा मंजूर की गई थी। मंगोलिया सरकार ने इस राशि का उपयोग दोर्नुगोबी प्रांत में अपनी पहली तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए करने का फैसला किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने आज पाकिस्तानी अधिकारियों पर समाधान वार्ता को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी समाधान खोजने के बजाय दुष्प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान का अपनी विफलताओं के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच आपातकाल लागू किए जाने के बाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पीटीआई के साथ अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ता जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाति और पीटीआई के प्रांतीय अध्यक्ष जुनेद अकबर भी शामिल हैं। पुलिस ने स्वाबी में पीटीआई के 56 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को बढ़ते आतंकी हमलों और संवैधानिक व्यवस्था के ठप होने का हवाला देते हुए प्रांत में आपातकाल लागू किया था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारियों में फेरबदल किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले सप्ताहांत हुए घातक हमले के बाद उड़ानों के परिचालन पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकारी हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच कर रहे हैं।
1: सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों के साथ हवाई अड्डे की सुरक्षा और परिचालन क्षमता की जांच पूरी होने तक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। 10 और 11 अक्टूबर को हुए हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हमलों के बाद कई विमानन कंपनियों ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ान रद्द या निलंबित कर दी है। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के आधिकारिक प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के खतरे का पता लगाया गया है और उसे निपटने की कार्रवाई की जा रही है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि हमले में मारे गए भारतीय नागरिक मोहम्मद यूसुफ अली के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार रियाद में ही करने का फैसला किया है। दूतावास इसमें परिवार की मदद कर रहा है। दूतावास के अनुसार घायल भारतीयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूतावास ने कहा है कि वह घायलों के परिजनों के संपर्क में है और उन्हें आवश्यक सहायता दे रहा है। इस बीच हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विश्व दर्पण के लिए दुबई से मनीष शिवा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अजीत वर्मा।
0: रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि यूक्रेन के साथ ऊर्जा युद्ध विराम के मुद्दे पर उनके पास अभी कुछ भी कहने को नहीं है। संभावित ऊर्जा युद्ध विराम केवल तेल शोधन संयंत्रों या अन्य सुविधाओं पर लागू होगा या किनके साथ विशेष रूप से संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं, इसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में बुधवार तक चलने वाले ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि 3 दिन के इस महोत्सव में 10 नाट्य दल 11 नाटकों का मंचन करेंगे।
2: आज से शुरू हुआ है, 12-13-14 तक के 3 दिन चलेगा। दिल्ली में एनएसटी का अपना सभागार अभिमंच तथा एलटीजी कमानी श्रीराम सेंटर, वहां पर प्लेस चलेंगे। लगभग हर रोज 2-3 नाटक का मंचन होगा और भारत समेत 9 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो टैगलाइन है ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल का, शेयर्ड स्टोरीज। सो शेयर्ड स्टोरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अगर शेयर नहीं करेंगे अपनी अपनी सिविलाइजेशनल स्टोरी को, अपने अपने कंटेम्प्रेरी स्टोरी को, रियलाइजेशन को, तो हम वसुधैव कुटुंबकम बनने में असफल रहेंगे।
0: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA

0: with this, it's time for me to say goodbye, sayonara. Take good care of yourselves with us. This is your RJ Annie signing off from the studios of Akashwani Chennai on 100.1 FM Gold. In a short while, it's time for us to listen to news from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ

आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra Karyakram mein aapka swagat hai. प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें. कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा रोहतगी.
0: थैंक यू अमित. Benchmark domestic indices decline, Sensex sheds over 500 points, Nifty settles at 22,363. Country's retail inflation rises to 5.54% in September this year, and global crude oil prices rise over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों का नुकसान, निफ्टी 22,363 के स्तर पर दर्ज. सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.45% दर्ज हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की तेजी.

0: And before we give you the economic details, the stories, very important announcement for you, our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार आज कारोबार की शुरुआत में मजबूती के साथ तो खुले, लेकिन शुरुआती बढ़त कायम न रह सकी। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट से 548 अंक गिरकर 71,925 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices failed to hold their initial gains and ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points, nearly 0.8%, to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points or 0.7% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The Mid-Cap 100 index edged up marginally and the Small-Cap 100 index gained 1.4%.

0: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
1: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, hospitals shed 2%, FMCG fell over 1.3%, and PSU banks dropped 1%. In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3%, and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined, and shares of 281 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पे दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ नांगली दिल्ली से।
0: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन है, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है। तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो कालाबाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा, मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं? बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इस पर थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए सर।
0: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
3: जोशी साहब, देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्यौहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहाँ तक सवाल स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए, स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाएंगे, कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी, लेकिन हाँ, उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ कीजिएगा, नवंबर के बाद जो है, 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी कीमतों में गिरावट आए।
1: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended after 8 weeks that the market closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
3: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is one of the big problems. So if you see the crude prices, almost around $105 yes. a barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arab. That means the more disruptions possible in the crude oil market. Hmm. Then there was expectation that inflation is expected to go up, as we have seen that inflation is now 5.54%. And that is giving a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike. Yes. So this was the third one. And the other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks. Yeah. So combination of all the bad news had an impact on the stock market. And market is still looking for some kind of positive news. But unfortunately, they are getting nothing. And that is why we are seeing lot of selling pressure in the market.
0: मुंबई से अगले श्रोता के तौर पर रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लर रिलेशन

0: मैं मेरे लड़के के नाम यूसुफ के नाम पर कर सकता हूँ क्या, ये सवाल है। और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे, ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहेगा?
1: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं? चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफ़र जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है। बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुँच जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेज़ी दिखेगी। जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में 3 हैं, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फ़ायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा।
2: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा।
1: गुड इवनिंग।
3: हाँ सर, एक सवाल अभी आपसे सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75। अब वो पिछले 3-4-5 दिन से देयर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, विच इज एडिंग टू द कोर इन्फ्लेशन फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय।
0: उनकी
3: सप्लाई तो ऐसे ऐसे माहौल में थोड़ी सी रेगुलर होनी चाहिए।
1: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं तो जो 5.54% महंगाई के आंकड़े हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे अलावा और भी 3 सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ़ कीजिएगा भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और नींबू की बात करें, यानी कि टॉप 5 आइटम्स में 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति इसकी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। इस बार प्याज की पैदावार में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है। तो मदर डेयरी पे जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहाँ पर उपलब्ध है जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ मैंने देखा है। और बाकी जो जिसको कहते हैं ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी वो भी चल रहा है, लेकिन हाँ एक बात आप ध्यान रखिए कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है वहाँ से नई फसल जल्दी ही बाज़ार में आएगी, तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं।
4: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
1: और नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है।
2: जी
4: जी शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में टिगर नहीं है, कच्चे तेल की कीमतों ने उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटिमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है। क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहाँ से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा या बाजार को वहाँ से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
1: देखिए, पॉजिटिव तो वहाँ से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है, और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है
2: जी।
1: ब्याज दर बढ़ती है तो हम आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक में ही पैसा रखो या ऐसे जगह पे रखो जहाँ आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी ऊँची है।

0: भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है, अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है। अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे। दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ गई है।
1: शिशिर, यू नो अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ triggers, but before I come take my question to you, we have the next caller with us online. Nitin is calling us from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते, अपना सवाल पूछें।
2: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया ना कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, मैं पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में 1 साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, 1 साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड आएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनो के, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे तो उस सिक्के को हम सेल लेंगे तो जो वैल्यू हम लाएंगे तो उसके बाद वो हमसे रिटर्न में लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरे लेते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है, और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे ले लिया तो एक साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी।
1: शिशिर, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं।
0: मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला आपने अगर एक साल के लिए ब्याज के लिए, एक साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है और वहां पर आपने एक साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज, जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपने देखा होगा कि आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको एक साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको 3 महीने में 6 महीने में साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो 3 महीने 6 महीने की बात नहीं, अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद पूरी होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा, तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर और उसे बेचने जाते हैं तो किसे आप बेच रहे हैं? किसी एक संगठित जगह पर बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं? और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पर जाते हैं तो आपको नकद तो मिल जाता है जो उस समय आपके भाव है। गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आपको उससे कम मिले भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं।
1: जी, सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट एज यू नो अमित वाज सेइंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, they are not getting positive triggers from anywhere, but for an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because there's a, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices, in the stock market, you know, share prices, and so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
0: certainly, because market always needs money as well as the patience. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
1: Yes.
0: So what happens that when there is a correction in the market, we saw, oh, we are going to lose everything. But those are the, I mean, something, most of the time it is a notional loss.
1: Yes.
0: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stock at a very low price, that's really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
1: Yes.
0: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices. And you should also have some money put into the mutual fund.
1: Yes.
0: And apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold,

0: अगले श्रोता के तौर पे महाराष्ट्र से के शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपना सवाल पूछिए।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मेरा क्वेश्चन ये था कि टीयर टू जो सिटी है, मतलब टीयर वन में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या बड़ा सिटी, वहाँ बंदरगाह होता है पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत जाता होता। टीयर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
2: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और आपको एक चीज़ बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है।

0: काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट हम आपको बताएं कि आईटी कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पे खोले हैं जहां पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहां पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहाँ पर खोले हैं। तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएँ बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई हैं या फिर वहाँ पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है। तो आप अगर छोटे शहर में हैं या मझोले शहर में हैं तो वहाँ पे आर्थिक परिस्थितियाँ और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
1: शिशिर, अगर रुपए की स्थिति पे आते हैं, रुपए ने तकरीबन आज 1 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी। हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद सीआरआर रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
2: सीआरआर रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने।
0: देखिए, अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ये असर कुछ समय तक बना रहेगा।
1: और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा।
2: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated to 5.54% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83% recorded in August. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas increased to 6.08%, while in urban regions it rose to 4.88%, and food prices continue to remain a key driver of inflation. A very brief comment from you.
0: Anubha, just one thing, it's a median target rate of 4% which we have breached. In fact, that was breached last month itself. Now the concern is that if it exceeds 6%, then there will be a bigger problem. So, and as of now, we are expecting that it will breach.
2: It will breach.
1: Delhi se Shri NP Singh hamare saath maujood hain.
3: Ji, sir, good evening to the all panelists. I just want to know that it's about UPI. If the UPI amount is 3,000 and we divide the payment into 2,000 and 1,000 in two times, so then also it will attract the, you know, the surcharge.
0: If it is less than 2,000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2,000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2,000 rupees and 1,000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course it will. 2,000, for the 2,000 rupees it will, because 2,000 or more.
2: Jee.
0: So it will attract MDR, but please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer, it is a shopkeeper who has to pay at the time of getting money from the bank or the institutions.
1: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है। यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया। हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही। इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया। हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं। जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
4: हेलो सर, नमस्ते। मैं आकाश बोल रहा हूँ। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल, जैसे मेरी FD बनी हुई है तो उसमें 1 साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया, तो दूसरा सवाल जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने FD में इन्वेस्ट करा है अभी, तो गोल्ड जैसे FD का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या FD में ही हमें बने रहना चाहिए, और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
0: देखिए, आपकी

0: शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना है उसी शर्त पे भुगतान होगा, ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है। रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज़्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही तो आपको नुकसान होगा।
1: जी, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। द 2026 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन अवार्डेड टू अमेरिकन इकोनॉमिस्ट्स रॉबर्ट ई हॉल एंड माइक वुडफर्ड फॉर डेवलपिंग माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स दैट हेल्प पॉलिसी मेकर्स स्टेबलाइज इकोनॉमीज ड्यूरिंग बूम्स एंड रिसेशंस। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज सेड देयर वर्क हैज स्ट्रेंथन्ड द थियोरेटिकल बेसिस फॉर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। द नोबेल कमिटी सेड द इकोनॉमिस्ट developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
2: Yeah, my quick question to Market Mantra team and Sarit. सर, जो भी गलत हो सकता था वो शायद हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है। अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो हैव वी टच्ड द रॉक बॉटम? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आपका क्या ओपिनियन? रिबाउंड
0: बाजार कितने स्तर पे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां।
1: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर डबलिंग इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। मिस्टर गोयल सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द बिजनेस प्लीनरी अंडर द 16th सेशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी इन न्यू दिल्ली टुडे। द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन बिजनेसेस इन बोथ कंट्रीज टू ट्रांसलेट द अपॉर्चुनिटीज created by the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement into expanded trade, investment, partnerships and job creation. And let's move on to commodities now. Global crude oil prices reversed course and moved higher today amid skepticism over US President Donald Trump's announcement of energy ceasefire between Ukraine and Russia. Brent crude was trading 1.2% up at $105.99 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading over 1.2% higher at $92.98 per barrel at the time of writing this report.
3: घरेलू सराफा बाजार में सोना 0.9% की गिरावट से 1,48,061 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान से 2,20,295 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में, अगर दोनों चीज़ों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नज़र आ रहा है।
0: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमज़ोर होगा, और कच्चे तेल की जहां तक बात करें, सऊदी अरब और उन जगह पर हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने, मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते।
3: जी शिशिर, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: और अब चलते चलते एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363। कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.54% इन सितंबर दिस ईयर। And global crude oil prices rise over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए भी सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं। इनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। एस्टोनिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में एस्टोनियाई संसद भवन रीकी कोगू में पद की शपथ ली। उन्होंने श्री अलार कारिस का स्थान लिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்றது. சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने

0: कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाएं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतर खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने कल सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु को महिला सिंगल्स के शुरुआती दौर में कोरिया की एन से यंग के विरुद्ध कठिन चुनौती का सामना करना होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी खेल 2026 के क्वार्टर फाइनल से बाहर होकर खिताब का बचाव करने से चूकने के बाद पहली बार कोर्ट पर वापसी करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the Jet Gold Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this

அடுத்து எம்பிஎன் சேதுராமன் எம்பிஎன்.

0: நிறைவு பெற்றது நினைவில் என்றவை தொடர்வது செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौती

0: से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रज मोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए तकनीक और परंपरा को साथ चलना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में निरामयता, दक्षिण एशियाई ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निरामयता व्यक्ति, समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंधों की सभ्यतागत समझ की खोज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்ட இந்த நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुले. केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया. श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है. इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए. उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया. श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है. हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है.
2: केंद्रीय

0: स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ. सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियाँ कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया। ये स्वदेशी तकनीक प्रदर्शित करने और उद्योगों द्वारा उनके हस्तांतरण अपनाने तथा व्यवसायीकरण को सुगम बनाने के लिए विवरण सूची अनुसंधान और उद्योगों के बीच की दूरी पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला राष्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the Jet Coal Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
3: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side, or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods. India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
2: Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes, and strengthen trust in healthcare services. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava has written a letter to the chief secretaries of all the states and UTs in this regard.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे. केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया. श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है. इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए. उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया. श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है.
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो. पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें. यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है. आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम

0: ये नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियाँ कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु पुदुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
2: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
1: Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes and strengthen trust in healthcare services. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava has written a letter to chief secretaries of all the states and UTs in this regard. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Prahlad Joshi, held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. The meeting held discussion on various issues concerning sugarcane farmers, including ground-level challenges, discrepancies in recovery figures reported by sugar mills, weighing procedures, wastage, laboratory testing and crop insurance. This committee will comprise representatives from the central government, state governments of Karnataka and Maharashtra, farmers' organizations

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மை மனோஜ். बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में शामिल होने वाले सभी गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर श्री शाह ने कहा कि ये बैठक आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद कार्यक्रम में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय अब ये तय करेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान अलग अलग की जा सकती है या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करना आवश्यक है।

0: जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। विस्फोट का सटीक स्थान नांगी टकरी क्षेत्र में सतवाल नाकी है, जहां से सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल हालिया क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन कर रहा है। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में ओलंपिक चैंपियंस और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugar cane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi held a meeting with delegations of sugar cane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. Uttar Pradesh government has provided 493 crore rupees in financial assistance to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstorms and cyclones. In the function organized in Gorakhpur, Chief Minister Yogi Adityanath said, within just 8 to 10 days, the double engine government has made arrangements to provide compensation to the food providers for damage to their crops, houses and livestock. The CM stated that the subsidy is being transferred directly to the bank accounts of over 9 lakh farmers in the state. The Election Commission of India has extended the deadline for filing claims and objections to Maharashtra's draft electoral rolls to 26th of this month. The draft electoral rolls are published on 31st August. According to the revised schedule, the disposal of claims and objections will be completed by 10th of November, while the final electoral rolls will be published as scheduled on 16th November. The Chief Electoral Officer has urged eligible citizens and new voters to use the extended period to enroll, correct existing entries or file objections wherever necessary. India and the European Commission have agreed to strengthen cooperation on carbon markets and the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism, or CBAM. The understanding emerged during a meeting between Power Secretary Pankaj Agarwal and Gerasimos Thomas, Director General for Taxation and Customs Union in New Delhi yesterday. Top officials of India and Iran held talks yesterday and exchanged views on the latest regional and international developments and issues of mutual interest. The Iranian embassy in New Delhi said in a social media post that Secretary of Iran's Supreme National Security Council, Mohsen Rezaei, held a telephone conversation with National Security Advisor, NSA Ajit Doval, last evening. In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba elite commander, were killed in a landmine blast along the line of control LOC when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The group of terrorists was trying to sneak across the LOC in the Nange Takri area of Krishna Ghati sector late yesterday when they triggered a mine. In Chhattisgarh, security forces achieved a significant success in the ongoing anti-Naxal campaign by recovering a large cache of automatic weapons, live ammunition and explosives from the Naxal dump hidden in the dense forests of Sukma district. Acting on vital intelligence provided by surrendered Naxalites, a joint team of the district force, district reserve guard and Bastar fighters conducted an area domination.